0: लकड़नि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानू सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: ख़ुशख़बरी ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
10: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 03125252786
6: जी हाँ 2315525786
10: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301043842।
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: कराचीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 8 ॼणा हयाती विञाए वेठा। सोल्जर बाज़ार, मलीर, आयशा मंज़िल, बिन कासिम टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में रोड हादसा। ट्रैफिक पुलिस मूजिबि कराची में हलंदड़ साल मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 603 हयातियूं ज़ाया थियूं, 7,467 माण्हू ज़ख़्मी थिया। हेवी ट्रैफिक हादसनि में फोत थियल शहरनि जो अंग 184 आहे।
1: खैरपुर में फरपोटा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में 40 सालनि खां हलंदड़ खूनी तकरार जो निबेरो। धुरियुनि ते मजमूई तौर 2,75,00,000 रूपया ॾंड मुक़रर। रहीम बख़्श फरपोटो धुर जे 3 खून 15 ॼणनि खे ज़ख़्मी करण जो ॾोह साबित थियण ते 2,25,00,000 ॾंड मुक़रर। अतीकुल रहमान फरपोटो धुर मथां 1 खून ऐं ॿियनि नुक़साननि जो ॾोह साबित थियण ते 50,00,000 रूपया ॾंड मुक़रर कयो वियो। सर्किट हाउस में थियल निबेरो ज़ुल्फ़िकार ख़ान कुमारियो, एजाज़ ख़ान बुगियो, भोला बख़्श महर जी सरपंची हेठि थियो। धुरियूं खीरखंड।
0: ऐं मोहन जो दड़ो वेझो मोटरसाइकिल स्लिप थियण सबबि ज़ाल मुड़ुस दादू केनाल में किरी पिया। मर्द खे बचायो वियो, औरत लुड़ी वई। गोला जारी सुमला सफारी पार्क वटि कुतो अॻियां अचण सबबि मोटरसाइकिल स्लिप थियण करे जोड़ो दादू केनाल में किरी पियो। ॿियनि इलाइक़े वासनि मर्द खे कढी वरितो। संदसि ज़ाल साजिदा बुबे जी गोला जारी आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
5: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
6: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371-1800-3920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
11: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301043842।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हिंद का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी, सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राबितो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125252786
6: जी हा 2315525786
9: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435, एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा आवां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125252786।
4: जी हाँ, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: केस।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आम दौरे ते अज तहरान पहुंचंदो, ईरानी क्यादत सां मुलाकात कंदो। अमेरिका ईरान विच में मुस्तकिल जंगबंदी समेत खिते जे सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कई वेंदियूं। ईरानी परडे॒ही वज़ारत तसदीक कंदे चयो आहे त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अॼु ईरान जे दौरे ते पहुचंदो, ईरानी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। उमानी परडे॒ही वज़ीर बि अॼु तहरान पहुचंदो। उमानी परडे॒ही वज़ीर जो दौरो आबनाए हुरम ते हलंदड़ ॻाल्हियुनि जो तसलसुल आहे।
3: पातली वेझो तेज रफ़्तार वेन ट्रैक राड टुटण सबब कल्टी हिकु मुसाफ़िर फौज 15 खां वधीक ज़ख़्मी। हैदराबाद खां माथिरी वेंदड़ वेन टंडो मोहम्मद खान रोड ते वीरानी मोरी स्टॉप वटि कल्टी थी वई। हादसे जे नतीजे में टंडो मोहम्मद खान वासी फैसल महमान फौत थी वियो आहे। फौती जो मड़ ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल।
2: घोड़ाबारी में किरियाने जे दुकान मां चोरीअ ख़िलाफ़ शहर में शटर बंद हड़ताल। चोरस सूरत टक्कर जे दुकान खे खाट हणी लखे रुपए जो सामान ऐं रोक रक़म खणी विया। वापारियुनि पारां चोरी वाके ख़िलाफ़ एहतजाज। शहर में शटर बंद हड़ताल। वापारियुनि जो चवण आहे त चोरी ऐं पुर्जे वाकियुनि सबब शहरी पाण खे गैर महफ़ूज़ समझी रहिया आहिनि।
4: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
7: अक्सर वालदेन सवाल कंदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
8: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
9: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा इस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा इस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-32-41-230।
10: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
0: खुशखबरी अवांजे पंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अजा मुस्तफा सीएमएच हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियन जो इलाज ऐं बार जो न थियण बांझपन
8: डॉक्टर अजा मुस्तफा एमबीबीएस रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी याद रख निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
11: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
12: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
11: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
12: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
11: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
12: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
11: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
12: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
8: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
0: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125257 86
0: जी हा 2315525786
8: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो आसान जवाब यो आ ही बार भी असां वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ही पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताईं जितरा भी बार आए उनन के ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगान लाजमी आए।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम यू आर सुनिए टटरी रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आप जी रुखसार सेंस की आवाज। आप आई होप सी जहाँ जहाँ भी मौजूद है, बिल्कुल टिप टप से कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं, पूरे पूरे 1 बजे तक।

प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:20 जो कि पाकिस्तान के मियारी वक्त है, तमाम तर लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिसमें भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे और अपनी गाड़ियों और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस में खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलब।

ओके जी, प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरह के कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR मैसेज राइट कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जो कि है www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर आपको मिलती है पोस्ट जो भी होती है जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03001134888. इसके ऊपर कॉल करेंगे आप लोग मुझे और हम प्ले करेंगे एक और गाना और उस गाने के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानेब. तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: रहा हूँ कि मेरी पहली कार मिल गई, वरना आपका प्रोग्राम और सिर्फ कार मिल जाए, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है,
1: ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है। अब ये किताब में लिखा जाएगा कि रशीद अहमद की पहले कार लगी थी।
0: चलो जी, ये भी आपका बड़ापन है, आपकी मोहब्बत शफकत बनाए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छी आवाज और बहुत अच्छा अंदाज है प्रोग्राम पेश करने का। तो कोशिश करता रहो, बहरहाल जो भी है बेहतर है। कॉल तो मिल गई ना?
1: बिल्कुल कॉल तो मिल गई ना। ओके तो बताइए कौन सा गाना है
0: जी। ए सेवा मुंदरी दा सेवा, ए सेवा मुंदरी दा सेवा, मैं चारी उम्र करांगा तेरी सेवा, निखा बावी आण वाली निखा बावी आण वाली, सेवा मुंदरी दा सेवा।
1: वाह, किसको डेडिकेट करेंगे
0: जी? ये अताउल्लाह खान इसका खेलवी का सॉन्ग है और रीमिक्स नहीं लगाना, ठीक है? नंबर एक, नंबर दो, मेरे प्यारे भाई फराज अली है टक्कर में, आपको सुन रहे हैं, वो उनको सलाम कहूंगा, और जवार भाई है और ये ताहिर लुंड जो मुझे आपका प्रोग्राम सुना रहे हैं, और उनके वालिद को सबको सलाम, और अच्छा, आपके लिए खूबसूरत जी।
1: अच्छा, ये जो आपने गाना कहा है, आपने कहा है रीमेक्स में ना लगाना, अच्छा ये अताउल्लाह ईसा खान खेलवी ने दोबारा से गाया है तो वो वाला चला दूं?
0: नहीं नहीं, दोबारा से नहीं, ओरिजिनल, चलो दोबारा वाला लगा
1: दो। दोबारा वाला लगा देते हैं, चलें ठीक है, जबरदस्त। ओके जी, क्या कह रहे थे आप?
0: तो सलामत रखे, अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़, जिंदाबाद, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये

0: तो हम रिसीव करने जा रहे हैं शो की एक और कॉल और चेक करेंगे कौन है कहाँ से. हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से
1: मैम? नहीं पहचाना.
0: ओ सागर भाई. सागर भाई कैसे ठीक ठाक?
1: कैरियर कैरियर करम करम मारे.
0: अच्छा मुझे बताएं गाना सुनाना है कहाँ से सुनाएंगे?
1: मैं गाना आज मारवाड़ी जबान में सुनाऊं.
0: मारवाड़ी जबान में? ओके सुना दें. अच्छा सा
1: घड़ी रे घड़ी पेटे नजर हरी तारी नजर हर तुम कभी घड़ी रे घड़ी पेटे नजर हरी चारों तुम से जाऊ तारो तुम तो जाओ तेरे पिंजरे में हम ते प्रभुओ लाख लाख नील कुरे हरे पंखड़ी करी रे करी किसे नजर हरी.
0: वेरी नाइस. अच्छा इस गाने का टाइटल और सिंगर?
1: सिंगर मैं सच बताऊं?
0: हाँ
1: ये सिंगर ये मैंने ही गाया है और मैं ही रिकॉर्ड करूंगा. ये मैंने बनवाया है.
0: अरे वाह क्या बात है क्या बात है. फिर तो हम इंतजार करेंगे कि ये जल्दी से YouTube के ऊपर आ जाए.
1: ये आ जाएगा इंशाल्लाह मैम. 10-15 दिन में आ जाएगा.
0: चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. थैंक यू सो मच. और कुछ कहेंगे भाई?
1: और गाना कोई अच्छा सा सुना दे मैम.
0: अच्छा सा गाना अभी सुनाते हैं जी. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.
2: तेरे ते में मरना.
0: अच्छा अच्छे से गाने की अगर बात हो रही है तो अच्छा सा गाना हम प्ले करते हैं फ्रॉम द एल्बम सुबह आईना बाय आतिफ असलम. इनकी एल्बम का गाना इश्क नहीं हूँ इश्क में. तो ये वाला हम प्ले करते हैं और इसको सुनते हैं और इसी के साथ हम आगे चलते हैं. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाउ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713900392।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Police Headquarter Chowk.
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
4: जी सईद
2: अहमद
4: बात कर रहा हूँ।
2: सईद अहमद, ठीक ठाक गाना वाना लेकर आए? गाना वाना सुनाएंगे?
4: हाँ बाजी रुखसार, जरूर गाना सुनाऊंगा। और जरूर गाना सुनाए बिना वो मेरे को तो लास्ट में शामिल होता हूँ, टाइम पीछे थोड़ा बचता है, सुना नहीं
2: हो आप? चलें ठीक है, सुना दें फिर।
4: ये सिंधी सॉन्ग है अरिजीत तुफैल संजरानी का, वो सुनाऊंगा।

0: கொஞ்ச ஷஹர
1: अच्छा ये टाइटल क्या है गाने का?
0: टाइटल ये यार जी जो सुना रहा हूँ, एक सुन जो इसर आज तो
1: ओके ठीक है जी, बस प्ले हो गया आपका गाना। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज। गाना हम प्ले कर रहे हैं सईद अहमद का, और साथ साथ हम आगे भी

0: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान जे आम दौरे ते अज तहरान पहुचंदो। ईरानी क्यादत सां मुलाकातूं कंदो। अमरीका ऐं ईरान विच में मुस्तक़बिल जंगबंदीअ समेत खिते जे आम सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कंदो। ईरानी परडे॒ही वज़ारत तसदीक़ कंदे चयो आहे त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अॼु ईरान जे दौरे ते पहुचंदो। ईरानी क़यादत सां मुलाकातूं कंदो। ओमानी परडे॒ही वज़ीर बि सुभाणे तहरान पहुचंदो। ओमानी परडे॒ही वज़ीर जो दौरो आबनाए हरम ते हलंदड़ ॻाल्हियुनि जो तसलसल आहे।
1: अमेरिका जे ईरान खिलाफ डी डे जी शुरूआत थी वई आहे। अमेरिकी नायब सदर जी चयो आहे त ईरान वटि आलमी बहरी रस्तनि जी मुकमल तौर बंदिश जी सलाहियत मौजूद नाहे। मुआशी नाकाबंदी तहरान खे तबाह करे छॾींदी। अमेरिकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त असां आख़िरी मरहले में दाख़िल थी रहिया आहियूं। दुश्मन ख़िलाफ़ सभ खां वॾी मुआशी कार्रवाई शुरू करे छॾी आहे। सदर ट्रम्प ईरान जो एटमी प्रोग्राम दफ़न करे छॾियो आहे।

अमेरिका जे मुआशी हमले में ईरान फौजी मुआद ते नाकामी जो इतराफ कयो आहे। ईरान पासदार इनकलाब जे तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहबी चयो आहे त अमेरिका खे जंगी मैदान में कामयाबी मिले आ त मुआशी मैदान में शोर न करे आ। ईरानी फौज दुश्मन खे पोइते हटण ते मजबूर कयो आहे। जंग में तहरान कामयाब थियो आहे।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: तो आज का टंग ट्विस्टर है कि काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया, ठीक है, ये कहेंगे, ये कह के दिखाएंगे। जब आप ये कहेंगे कि तो जो बंदा ज्यादा सही सही बोलेगा वो बन कर जाएगा। और कॉलर चेक करते हैं जी, नेक्स्ट। हेलो,
1: सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम सरदार, आज तो पहली कॉल लग गई है।
1: बहुत देर से ट्राई कर रही थी।
0: क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ कि तंग ट्विस्टर सुना बोलोगी?
1: जी सुना, आप एक बार रिपीट करें।
0: एक बार रिपीट करूं? ओके। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया।
1: काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर
0: काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ और कुछ कहना है? अच्छा
1: आपको खुश रखे हमेशा।
0: मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता?
1: वैसे मेरी नजर में ना आप सबसे अच्छी है बस।
0: अच्छा मैं सबसे अच्छी हूँ, वाकई यही बोला है?
1: बिल्कुल वाकई में यही बोल रही
0: हूँ। अच्छा मैं समझी कि मुझे गलत सुनाई दिया।
1: चलो कितना प्यार है तुझसे, इसने
0: बताओ। हाय
1: आपके लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। यही प्ले करना है क्या?
1: नहीं बस मैं आपको सुना रही थी, मतलब आपके इजहार के लिए।
0: चलें जबरदस्त, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू सरदार। तो बहुत सारा ख्याल रखो।
1: अल्लाह
0: हाफिज। ये थी सरदार। हमारा गाना चुप हो गया है। हमारा गाना चुप हो गया है और ये पता नहीं क्यों चुप हो गया है। हम इसको चुप होने नहीं देंगे एंड हम प्ले करेंगे आतिफ असलम की आवाज को। आज इत्तेफाक से आतिफ असलम के ये अच्छे अच्छे गाने मेरे सामने आ रहे हैं और देखें एक और अच्छा सा गाना। 03000113488 के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं।
2: हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा...
0: एक और नेक्स्ट कॉलर चेक करेंगे जी, कौन और कहां से? हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल?
3: बाजी हाल चाल सही है। काल हमारे कट देता है बाजी, लेकर हमारे पास दुश्मन है तुम्हारी।
0: नहीं कट देता नहीं है, कट जाती है, ऐसी बात नहीं
3: सच
0: है।
3: सच पूछो तो अज ट्यू चक्कर आने माँ आदम तो लद्वा बैंक
0: नहीं। अगर आपकी कॉल काटनी होती, अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता सिस्टम तो हम कॉल उठाए ही ना स्पेसिफिक लोगों की, है ना?
3: अफसोस है हमारे को, हम पुराना।
0: बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात
3: कोई गाल नहीं है,
0: बिल्कुल ऐसी बात नहीं आता। जिसकी कॉल लगती है लग जाती है, जिसकी नहीं लगती नहीं लगती। अच्छा मुझे बताएं कि टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे?
3: बस बाजी असा ये बुधायो थे तो इन्हें करे कॉल कई थे मां अज डहू चक्कर कॉल लगी नथी, लगे थी तो बिल्कुल कटे थी चलो हथ था।
0: ओके और कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? और कुछ कहेंगे? चलिए जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल ऐसे कॉलर्स का बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती कि जो सिचुएशन को ना समझते हो, जो ये समझते हो अगर उनकी कॉल कट जाती है, अगर नहीं लगती तो वो इसका जिम्मेदार आरजी को समझते हैं। तो अफसोस के साथ मैं भी कुछ नहीं कर सकती, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो इसका मेरे पास कोई हल भी नहीं है। अगर आप लोगों की कॉल नहीं लग रही है तो मैं जबरदस्ती आके तो नहीं लगवा सकती ना, तो यही चीज है। और जिसकी लग जाती है लग जाती है, और जिसकी नहीं लगती उसकी नेक्स्ट टाइम लग जाती है, जिसकी कट जाती है उसकी दोबारा भी लग जाती है, जैसे आपकी लग गई। तो अगर हम कॉल उठाना ही ना चाहें तो हम आप लोगों की कॉल ले ही क्यों, तो ये सोचने वाली बात है। सो थैंक यू सो मच आपका। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब थोड़ी सी ना रूल्स जो है ना कॉल्स के लिए सख्त करूं, क्योंकि बहुत सारे कॉलर जो कि कहते हैं कि कॉल नहीं लग रही, कॉल मिलती नहीं है, कॉल कट जाती है, तो भाई डेली कॉल नहीं करनी, ठीक है? डेली कॉल करेंगे, कॉल में खुद से ड्रॉप करूंगी बस, ठीक है? आप खुश, डेली कॉल नहीं करेंगे, 3 दिन छोड़ के फिर कॉल करेंगे, मैक्सिमम 3 दिन आपसे ये रूल होगा। और अगर मैंने देखा और मैंने सुना कि आपने अगले दिन कॉल की है तो कॉल मेरी तरफ से ड्रॉप की जाएगी, ठीक है जी? तो ये कुछ रूल्स होंगे उन तमाम लिसनर्स के लिए जो कि कभी कभार कॉल करते हैं और उनकी कॉल नहीं लग पाती है, तो उनकी भी हम कॉल जो है ना लगवाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी जो मेरे सारे लिसनर हैं वो कभी कभार कॉल करते हैं तो उनकी कॉल लगे और कॉल लगने के बाद उनसे मेरी बात हो। तो टंग टेस्टर के लिए हमारा सेगमेंट जो कि इस वक्त चल रहा है, नेक्स्ट कॉल है। हेलो, ओके जी, मास्टर मंजूर का सॉन्ग। अच्छा, इस सेगमेंट में वही लोग कॉल करेंगे, टंग ट्विस्टर बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट कॉलर एक और ट्राई करेंगे। हेलो,
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
4: मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ।
0: मोहम्मद हनीफ कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: थरी मीरवास से।
0: तो कॉल कर रहे हैं, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
4: नहीं नहीं, अभी 2-3 दिन
0: कॉल। अच्छा, प्रोग्राम सुन रहे हैं, टंग ट्विस्टर सुन रहे हैं, बोलेंगे?
4: बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा,
0: सॉरी,
4: आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रहा।
0: आवाज मेरी सही नहीं आ रही, अब ठीक आ रही है? हेलो, ओके जी, आपकी आवाज भी गायब हो गई है। तो ये कुछ सिग्नल्स इश्यू होते हैं जिसकी वजह से या तो आवाज चली जाती है या कॉल ड्रॉप हो जाती है, ठीक है? तो ये चीज है।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे, त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
3: ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713900।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-32-41-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राबितो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा ॿुधायां, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते ओटी, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
9: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-252-5786।
7: जी हाँ, 2315-5786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: अच्छा कमेंट्स भी तो पढ़ने हैं यार, कमेंट्स को पढ़ते हैं कमेंट्स. ओके किधर गए कमेंट्स?
1: चीज क्या
0: इस माँ की शो का कमेंट आया, मैं रहूं या ना रहूं मेरे गीत याद रखना, जो कभी तेरी महफिल में गुनगुनाऊं वो सुर याद रखना, लोग बदगुमान करेंगे तुझे, लोग बदगुमान करेंगे तुझे, बस तुम मेरा प्यार मेरी शरारतें याद रखना. आहा सलाम सर स्मार्ट आया है, वेलकम करो. वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो. सरदर्द हम एवं ही आपको याद करते हैं, एवं क्यों? स्मार्ट किशोर कहते हैं अरे भाई दिन है बड़ी मुश्किल से रात गुजारी है. गाने की बात हो रही है. अच्छा माँ किशोर कहते हैं बाई टीसी
1: ना खबर हो शब्द लेना सहर हो.
0: बाई करने से पहले अपने कमेंट्स तो सुनते जाते
1: सफर हो और तुम साथ.
0: फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कमेंट्स नहीं पढ़ती आप,
1: रात जुगनू से
0: देख ले पढ़ती हूँ मैं.
1: रंग खुशबू नजारे प्यार के हो इशारे.

मजे से गाना गा रही हूँ मैं आज. अच्छा हाँ, मैसेजेस की तरफ चलते हैं. हेलो आरजी सलाम, आदाब एंड ओके फाइन. काफी दिनों बाद आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया है, सो वेरी एंजॉय किया है. नाइस एंजॉय, शुक्रिया आरजी, बाय एंड टेक केयर. जी पाल कराची से और कहते हैं सॉरी आरजी, लास्ट बात भूल गया था. तो बात यह है कि आप म्यूजिक मस्त प्ले करती हो, नाइस सॉन्ग कलेक्शन सुपर. ओके अब ऑफिस जाते हैं.

0: GS70 FM 80. सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

Abuji, welcome back. And aap sun rahe hain Zindagi Gulzar. Saath saath comments aur messages ko entertain karenge. Time bahut zyada limited hota hai hamare paas aur Isma Kishore kehte hain ki 10 minute sabr karke read karti na. Itni jaldi kya thi? वो आपका भाई का वो कमेंट देख लिया था ना, तो मैंने कहा कि अब रीड करना चाहिए. ठीक है, इसलिए रीड कर लिया था, वरना तो 20 मिनट रुक के रीड करना था मैंने. नहीं, मजाक कर रही हूँ वैसे, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है ना, दोनों चल रहे होते हैं साथ साथ, तो वो कमेंट्स थोड़े से आगे चले जाते हैं, लेट हो जाते हैं. लेकिन दो घंटे का ही तो शो होता है, कौन सा मैं आपको सारा दिन बिठा के रखती हूँ. अगर आप दो घंटे का भी शो पूरा ना सुन सके तो फिर क्या फायदा मेरे शो करने का. वेरी बैड. वो सरदर्द आपकी तारीफ कर रही थी तो उससे थोड़ी मजाक कर रहा था. थोड़ी मजाक, मुझे तो थोड़ा मजाक लग रहा था, थोड़ा मजाक.

0: 8000 जिसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. लास्ट लकी कॉलर को हम चेक करेंगे जी कौन और कहाँ से. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से.
1: मैं मोहम्मद इस्माइल सिलचर से.
0: कैसे भाई, ठीक ठाक. शो सुन रहे हैं या पहली दफा सुन रहे हैं या पहली दफा कॉल कर रहे हैं.
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो मैं हर रोज सुनता हूँ. अभी मैं शिकारपुर से सुन रहा हूँ.
0: शिकारपुर से सुन रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त. वैसे शिकारपुर से नहीं सुनते आप.
1: नहीं, मैं फुलचर से हूँ. अभी आया हूँ दोस्त के पास यहाँ, तो इसलिए आपसे बात कर रहा था.
0: अच्छा,
1: शिकारपुर से बात कर रहा हूँ.
0: चले जबरदस्त. और मुझे ये बताइएगा कि आज की अच्छी बात क्या है.
1: आज की अच्छी बात यह है कि सबका एक दूसरा ख्याल करना चाहिए, अदब और अखलाक से रहना चाहिए.
0: वेरी नाइस.
1: मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ अगर आप
0: सुना चाहें तो.
1: मोहब्बत हर किसी से नहीं होती, मोहब्बत हर किसी से नहीं होती, और जिससे होती है वो हमारे नसीब में नहीं होता है.
0: अरे वाह, क्या बात है जी, बहुत बहुत कमाल.
1: और तुम्हें मेरे
0: जी सब कुछ ठीक ठाक. कुछ और कहेंगे. अच्छा सा
1: जो सुनना चाहते हैं, जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम. शो सुनते रहे, आपका शो बहुत अच्छा होता है. मैं भी बहुत दिल से सुनता हूँ आपका शो, मुझे भी बहुत पसंद है. तकरीबन मुझे भी बहुत टाइम हो गया है, मैं आपका शो सुनता आ रहा हूँ, मिस नहीं करता.
0: अरे वाह, क्या बात है. बस इसी तरह प्यार मोहब्बत से सुनते रहे.
1: आपका शो मैं मिस भी नहीं करता, और अगर आप नहीं आती हैं तो फिर आपके शो को आपको मिस करता हूँ.
0: अरे क्या बात है जी, क्या बात है. थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना.
1: अल्लाह हाफिज.
0: अल्लाह हाफिज जी. और ये थे कॉलर, लास्ट एंड लकी कॉलर. और इसी के साथ मुझे लगता है कि हमारा गाना भी खत्म हो गया है. एंड गाना हम नेक्स्ट प्ले करेंगे. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. लास्ट में हम इसी सॉन्ग के साथ जो है ना, अरे रैप अप करेंगे. ठीक है. अरे मैंने इसलिए किया कि मैंने एक गाना सर्च करके रखा था, वो मैंने खुद ही एकदम से ना क्लिक करके कट कर दिया. खैर कोई बात नहीं. और फाइनली जाने का वक्त करीब है बहुत ज्यादा.

0: 打打你三三马八打打你三马八打你三。你打打嘎嘎马八八嘎马打打你三。
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फील्ड मार्शल सहदास मुनिराज ईरान के दौरे से पहुंचो। ईरानी क्यादत से मुलाकात कद मानी परदेही वजीर भी सुबे तहरान पहुंचो। मानी परदेही वजीर जो दौरो आबना अरम से हलदड़ गाल तसलसल है।
3: अमेरिका के ईरान खिलाफ डी डे की शुरुआत की वही। अमेरिकी नायब सदर जी डेविन है ईरान वट आलमी बहरी रस्तन की मुकम्मल तौर बंदिश की सलाहियत मौजूद न है। मुआशी नाकाबंदी तहरान के तबाह कर छी। अमेरिकी नाणे वाले वजीर है असा आखिरी मरहले में दाखिल थी रहा हूं। दुश्मन खिलाफ सब का वे मुआशी कार्रवाई शुरू कर छी है। सदर ट्रंप ईरान जो एटमी प्रोग्राम दफन कर छो है।
2: अमेरिका के मुआशी अमले जो ऐलान फौजी मुआद से नाकामी के इतराफ है। ईरान पासदार इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मजबी है तो अमेरिका के जंगी मैदान में कामयाबी मिले आ तो मुआशी मैदान में शोर न करे आ। ईरानी फौज दुश्मन के पोते हटने से मजबूर किया है। जंग में तहरान कामयाब थो है।
3: कराची के नौजवान व्यापारी मीर रजा के अदालती जांच के वारसन रद्द कर छो। अदालती कमीशन जोड़ वाली हुकूमती फैसले खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल। केस की जांच लाए जीआईपी जोड़ने जो मुतालबो। वकील जबरान नासिर है तो जांच कमेटी की सिफारिश से अदालती कमीशन ठा वो है। हुकूमती फैसले बाबत वारसन के आगाह ना ही मीडिया जरिए खबर पई है तो असाजे 24 सवाल में कें भी जवाब जो जवाब ना मिलो। मीर रजा जहा आखिरी फोटेज भी नथा डना वन।
2: आजाद कश्मीर के कानून साज असेंबली के मखसूस सीटों लाए पोलिंग जो अमल मुकम्मल। औरतों के 5 मखसूस सीटों समेत 7 सीटों लाए 38 मेंबर्स वोट कास्ट कया। नून लीग वट 26 पीपल्स पार्टी वट 12 मेंबर्स मौजूद। नतीजन के ऐलान बाद आजाद कश्मीर असेंबली जो इजलास चूंडल नुमाइंदा हलफ खणंदा।
3: खान फरीदाबाद समेत सेवण तालुके में 212 स्कूलों जो इमारतों खतरनाक करार। सील करने हुकुम सेवण खान फरीदाबाद जहांगारा बूबक वार्ड रड़ी बंभा शेख आरजी ए बेन इलाकन जहा स्कूल जबूर हाल बणन। तालुके सेवण अंदर 28 एलिमेंट्री दोने हाई स्कूल जो खतरनाक करार। 184 प्राइमरी स्कूलों जो इमारतों खतरनाक हुजण सबब स्कूल में हंध मुंतकिल करण जो फैसलो। सुजाण धुरिन पारा स्कूलों की इमारतों की फौरी तौर से मरम्मत कराण जो मुतालबो।
2: वगण के मुख्तलिफ शाखन में पानी खोट खिलाफ आबादगार सरापा एतगाज इंडस हाईवे से धरणो। खावड़ शाख मुगियो शाख मीर बा लुंडी शाख ए बेन शाखन में पानी की खोट खिलाफ आबादगार एतजाज कयो। विकापुल वट इंडस हाईवे से धरणो बिहायो आबादगार जो शाखन में पानी छोर करण जो मुतालबो।
3: नसीराबाद तालके अस्पताल गैर फाल हुजण खिलाफ दाखिल दरख्वास्त ते बुधनी। शफाघर फाल बणाइण जो हुकुम सिंध हाईकोर्ट। लाड़काणे बेंच में दाखिल दरख्वास्त ते बुधनी थी। डीएचओ कंबर शादात कोर्ट एमएस नसीराबाद अदालत में पेश थो। 3 महीने अंदर अस्पताल फाल करण जो हुकुम। 10 सितंबर ताईं रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत।
2: नवाब शाह की अदालत फुर मजामत रेंजर्स इंस्पेक्टर के कत्ल केस में बिन जवाबदार के मौत की सजा बुधा छी। दहशतगर्दी टोड़ अदालत रेंजर्स इंस्पेक्टर शारक के कत्ल केस की बुधनी कई। अदालत जवाबदार करीम बख्श गोपांग सरवर राउ के 2 भेरा मौत ए 25 लख डंड की सजा बुधाई। जवाबदार खिलाफ 2024 में काजी अहमद रोड से कत्ल थियल रेंजर्स इंस्पेक्टर शारक के कत्ल केस दाखिल हो।
3: मोहन जो दड़ो वेझो मोटरसाइकिल तां दादू कैनाल में किरी बुधी वयल औरत जो लाश बे ॾींहं बि न मिलियो। गोठ ब्रादी सारो वासी औरत साजिदा बुधो जी लाश जी ॻोल्हा लाइ मकामी टोबन समेत लाड़काणे खां रेस्क्यू टीम बि पहुतल। औरत जो लाश हथु करण लाइ ॻोल्हा जारी आहे।
2: मातली वेझो तेज़ रफ़्तार वेन टायर टुटण सबब कल्टी हिकु मुसाफ़िर फोत 15 खां वधीक ज़ख़्मी। हैदराबाद का मातली वींदड़ वेन टंडो मोहम्मद खान रोड से मीरानी मोरी स्टाप वट कल्टी थी पई। हादसे के नतीजे में टंडो मोहम्मद खान वासी फैसल मेमण फोत थी वो फोतिए जो मड़ ए जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: जेकर तवा के मैदे की तकलीफ, सीने की जलन, खट्टी उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाँ परेशान थियण की जरूरत न आए। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे की खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाए आज़मूदा ऐं फायदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वगे खां शाम जो 5 वगे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-679-0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
6: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बेहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तेंदो आसान जवाब यो आ, ये बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी ए जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए, ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुवते मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
7: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी, सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713900392।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
9: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
9: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
9: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
11: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
12: खुशखबरी, اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن
13: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھندا نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لئے 24 کلاک کھلل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لئے ایڈمن نانا سولن جی موبائل نمبر 210-31-43-842
14: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
15: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
16: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
15: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
16: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
15: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
16: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا
15: 0331252578
16: جی ہاں 2315525786
15: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
16: سندھ جو آواز

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए बिना दल्ला तमाम खूबसूरत मासूम वही सुने समात से मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दुआ के समंदर चाहते की बारिश राजवर खजानों के साथ दुआ है पैसे पर सका से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नीचे टाक्टर करने से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से दर्द से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन तक जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। जी आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सकरण मोरो मेरे खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलते के नाम मस्ती। प्रोग्राम में तमाम तरह सुनने वाले समातों को वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रोग्राम में फंड होगा, प्रोग्राम में बातें करेंगे, प्रोग्राम में आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा म्यूजिक कलेक्शन भी लगाया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम और साथ ही साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर इज एंड टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड डीजे सिद्धराम उसका नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्धराम के साथ मौजूद है इस प्यारे से प्रोग्राम में तमाम लोगों के साथ साथ मौजूद है जनाब और कितने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है मुझे बताएंगे और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताएंगे। सो डियर लिसनर्स अंदर की हालत है कैसे ही आपकी हालत है उम्मीद इन शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबको मूड के साथ सबको प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली है। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मार दें तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद हो गए और इन 2 घंटों में हम करेंगे आप लोगों के साथ इतनी शाली बातें। ओके जनाब सो रेडी हो जाइए रेडी शेडी होकर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए आंटी फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी आंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुन लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बॉस आपके होटो पर 440 वोल्ट की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होटो पर 440 वोल्ट की स्माइल लाते हैं यहाँ पर ऐसा करते हैं आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं। बिल्कुल जी आगा से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत सी नात के साथ बहुत ही प्यारी सी नात हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुनते हैं। उसके बाद हम जैसे ही मुखातब होते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं जी फैमिली 88 नेटवर्क प्रोग्राम जल्दी का नाम बस्ती।

और मेरे क्या बात है, प्रोग्राम सुन रही है चलते के नाम मस्ती आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे और साथ ही साथ आप मुझे कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बता दें।

अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घूमने वाले लिसनर से यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके हमें सुनते हैं तो क्या करेंगे, अपनी खामोशियों को तोड़ लीजिए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हो लीजिए और अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8811। आप अगर मुझे फेसबुक पर आप ज्वाइन करने वाले हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है और जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है और पेज पर आप जैसे आएंगे तो वहां पर आपको आराम से हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जैसे ही आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। हालात थे हुए मानो जगह पोस्ट के लाइक नाइन करना, जल्दी करो बाबा। पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बताइए आप हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम का हिस्सा है और मुझे ये भी बताइए कि इंस्टाग्राम जो है वो कितने ग्राम का है, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती दुनिया में जो जाननी चाहिए। और साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, यहाँ पर फरवा गुल सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, यदि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सिद्रा मुस्कान, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आप ही आप कैसी हो, आई होप यू आर फाइन वेरी वेल, ये आप बताएं कैसी है। नजीर खोसो भाई हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, कहते हैं परिंदे जब खाते हैं उनका सर झुक जाता है और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है, ये आजजी और शुक्र गुजारी की खूबसूरत मिसाल है। क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन। और फहीम शेख हमारे साथ ही, वालेकुम सलाम, कहते मोलाम अदर चाल आए अदा खुश आयो सफा भला भाऊ गानो बधायो भला, न सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। हाजिर हाजिर अखलाक भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो हाले सुल्तान आ चुकी हैं, हाले सुल्तान हेलो वेलकम स्वीटी। और चाचा खालिद कहते हैं हाय सिद्रा कैसी हो, हो फाइन आई एम, अच्छा बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपको वेलकम कहते हैं। और फरवा कहती हैं सिस्टर प्लीज पोइट्री रीड कीजिएगा, हम कहाँ वाकिफ थे लोगों की फितरतों से, हमें लगता था जैसा जो दिखता है वो वैसा ही होता है, असां की भी लगंदो हो पर हाने खबर पया ना बाबा जमानो मटिसी वयो है। सो टेंशन न वठो। और कहती है सिस्टर प्लीज सॉन्ग नथो विसरी मुखा नथो विसरी मां, कोशिश कंदी तां चलाई गानो लाईंदा सी। और किशोर भाई कहते हैं स्मार्ट अजे जल्दी आयो है, स्मार्ट जल्दी आयो है, जाई बुधा वांदो। भली गाल है, भली गाल। अच्छा ये हमारे साथ है मायरा, कहती है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डियर, वाओ आज तो शो धमाकों से स्टार्ट किया है, ड्राई बुधा, यदि मैं सो रही थी आपकी आवाज सुनी तो बस नींद से उठ गई, अच्छा किया आपने। और एस एन आर बाणी वालेकुम असलम, कहते मैडम मुस्कान असा भी अच्छी वया हूँ, खुश सफा चाक चनी भली आ सफा मजे में, तुझे दुआओं खपन भी हो, ता हाल हवाल जो ठीक आयो। और किशोर भाई कहते हैं घर के ताने आप सुनकर आती होंगी, हम तो अपनी मैडम के ताने सुनते हैं, किलो फखर सा बुधायो था। यहाँ भी सुठी गाला। अच्छा फहीम कहते हैं कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भमर है जिसके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, वाह वाह वाह वाह। टॉपिक मो जो वहाँ का पुछो आए तो मुख्य बुधाए जो यो इंस्टाग्राम आए न, यो केतरन ग्रामन जो आए, बिल्कुल तो सवाल जो जवाब बुधाईंदा ही, पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना कयो, ठीक है ना, एतरी कंजूसी न करना कयो, मुझे पोस्ट के लाइक एंड शेयर कयो, उनका अलावा तमा असांजे प्रोग्राम में ज्वाइन थी वयो, हेते टाइम थी वाई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठू था, उनका पर वापसी जल्दी तमारी मोटी नासी सारी भी नासी भले तांगे छड़े ताई ते बैठा होजो, मां ओही वणी ओही मोटा थी, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, जल्दी करना मसी तमा जो संजो साथ पूरे 3 बजे ताई बैठा होजो, इते सफा न उठजो।

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की आवाज।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-230
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
9: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
10: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
10: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 0331252578 6
5: जी हा 3135525786
10: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

पता है। अच्छा अगर अॼु जे सवाल जी ॻाल्हि कई वञे, जेको सवाल अॼु माण्हुनि अञा ताईं कोन पुछियो आहे या ॿुधो आहे, त उन्हनि माण्हुनि खे ॿुधाईंदा हला अॼु जेको टॉपिक मूं अव्हां खां पुछियो आहे उहो कुझु ईअं आहे। तव्हां मूंखे ॿुधायो पिया त इंस्टाग्राम जेको आहे, ठीकु आहे, इंस्टाग्राम जेको आहे उहो केतिरे ग्राम जो आहे, छो त हुन हू पाण ई ॿुधायो त मां ग्राम आहियां। तव्हां मूंखे ॿुधायो त हू केतिरे ग्राम जो आहे। हिन सवाल जो तव्हांखे जेको आहे जवाब ॾियणो आहे, ठीकु आहे। और अगरि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है वो काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, लाइक और शेयर कर दिया करें। ये दोनों चीजें आप लोग ही करेंगे, मैं नहीं करूंगी, तो आप लोग कर दिया करें। उनके अलावा जगह जगह मानो असा बुधन पाया सभी के चौथा भरी करें आया तवाजी मोहब्बत हो समातू आई चाहतू आइन बाबा।

रीसू हिते तव्हां जा मैसेजेस बिल्कुलु पढ़ंदासीं, पर तव्हां जे लाइ जेके गाना लिस्ट में रखिया आहिनि सो उन्हनि गाननि जी तरफ़ बि अचूं था। ऐं गाना मूं वटि आहिनि तमामु घणा भला भला गाना, सो ही वारो ट्रैक सभ खां पहिरियां ॿुधूं था। ऐं गानो आहे

Kanana. कितना प्यारा गाना है कसम में। अब्दुल रजाक हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रजाक भाई आपको वेलकम कहा जाता है। दातुना कहते हैं अर्ज किया है, अर्ज करते हैं हाँ जी। लिखते हैं मेरे बे रबत ख्यालों में क्या रखा है, मैं तो पागल हूँ मेरी बात में क्या रखा है, बांध रखा है तेरी याद ने माजी से मुझे वरना, गुजरे हुए लम्हात में क्या रखा है, मेरी तकमील तेरी जात से ही मुमकिन है, तू अलग हो तो मेरी जात में क्या रखा है। वाह वाह वाह वाह, भली हुई सफा। फहीम कहते हैं अदर टॉपिक मुखी खबर कोने यार मथो ने आना जा। मां तो फुल तैयारी में आया। जानाना

अच्छा सुनील कुमार हमारे सारे सजा टॉपिक है नहीं पता ये क्या बात हुई बड़ा। और रहीं जी हमारे साथ फरवा के दिन टॉपिक इंस्टाग्राम का वेट और आपका वेट इक्वल है सच्ची बुधायो कसम थी। अच्छा जी खास के लिए लिखते हैं कि असान के चवण की जरूरत ना है सिदरा दुश्मन के जलाने लाए पर जो खिलनी काफी है। वालेकुम अस्सलाम सही था चो अल्लाह सही था चो अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि अच्छा जल्दी आया तो मान्या वांदा आयो सैया बाबा नेक्स्ट टाइम पंजेताली ते आऊंगा ये न कजा तुम पूरे 1 बजे इंदा करो वो अन्या लेट हो जो टाइम तो आयो।

हाल है सुल्तान के थे हेलो मुर्शद, इंस्टाग्राम का कोई वजन नहीं होता, ये एक डिजिटल एप है मुझे पता है। अच्छा बुखे अला न था खबर सही आता बुधायो बुधायो मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो जंगलों से आई हुई हूँ।

ओके जी जी खास के लिए लिखते हैं इंस्टाग्राम कोई सही है जी सही है गाल समझे मची हुई है। रशीद कोसो भाई हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से। रशीद भाई वेलकम कहते हैं आपको, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में। और चाचा खालिद आप आ चुके हैं प्रोग्राम में दोबारा से, आपको वेलकम कहा जाता है। टॉपिक के ऊपर आपने बात करी है, ओके जी। और ये जो सवाल है ना, छोटी एबीसी बड़ी एबीसी से कितनी छोटी है, तो ये हमने पूछ लिया था प्रोग्राम में, अब बड़ी का पूछेंगे। न बाबा गानो वडो ना है, गाने के वडो कयो वयो है। गाने भी तो छंद मामू जी पचराणी कयो मां सही आवन वन छा याद कंदा।

अच्छा हमारे साथ ये गोट मामन तैयब थीबू का हबीबुल हथीबू भाई कहते सॉन्ग बुधराय जो ठीक है बिल्कुल यो गाना तांजले हलाइंदा सी थैंक यू तांसा सगड मौजूद आए टॉपिक इते फॉलो कयो भाई कोन तेरे जी सोनी कोई होर अजो पांजी सीट ते वेरो मां तड़े ते तांगे चवंदी आ न तई दिसो धिका खाइंदो

चंद भाई हमारे साथ हैं, गोठ जान मोहम्मद जूने जो प्रेम मिस्त्री साहिल वालेकुम अस्सलाम नमक ग्राम जो थींदो आहे इंस्टाग्राम अल्लाह जाए बुधाए जा अच्छा पोस्ट खे लाइक शेयर कयो अञा ताईं अगरि तव्हां नाहे कयो त लाइक ज़रूर करे छॾींदा कयो और मीर तारिक बलोच कहते हैं मीर तारिक बलोच लाड़काणे खां ऐं मुंहिंजो नंढो भाउ मोहम्मद अज़ीम बि शामिल आहे प्रोग्राम में वाह वाह ॿिन्ही भाउनि जूं मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम में तव्हांखे चवंदा भली करे आया रिहाना खान में सुन रही है बखर से रिहाना वेलकम अखलाक भाउ हाणे वज़न थोरो घटिजंदो वञेसि ईअं झूल थोर में थोरो लॻे थो तव्हां खां मिस्टेक थी वियो आहे फरवा बिल्कुल आपका टॉपिक ऊपर वाला जो मैसेज है वो हमने रीड कर लिया था और हिदायतुल्लाह कहते हाँ जो आके सर पर चढ़ जाए वो सॉन्ग हमें सुनाकर ही दम लेती हो हाँ ना बाकी था तां सां गॾु गाना ॿुधण जो मज़ो ईंदो आहे अली अकबर बरोही भाई में सुन रहे हैं सक्रिन से आपको कहते वेलकम आप कहते प्रोग्राम की जितनी तारीफ करें गुड बहुत शुक्रिया जी अच्छा कमर ज़मान बलोच तव्हांजी पसंद जो गानो बिल्कुल हलाईंदासीं तव्हां असांजे प्रोग्राम में मौजूद आहियो थैंक यू मायरा केदे सिद्रा आपने कल भी मुझे गाना नहीं सुनाया था आज मुझे जरूर सुनाना ये कौन सा गाना है मुझे बताइए जरा अगर मिल गया तो लगा देंगे कोई मसले की बात ही नहीं है अगर स्मार्ट भाई हिते हमारा तो वैसे ही दिमाग खराब है तॾहिं हिते ईंदा आहियूं तुम और हम एक जैसा है हा न तुम और हम एक जैसा आहियूं तॾहिं असां हिक ॿिए सां गॾु आहियूं ईअं हूंदो आहे आमी बि चवंदी आहियां जेको माण्हू जहिड़ो हूंदा आहिनि हुन सां उन संगत में ओड़ा ई माण्हू हूंदा सो असां पाण क्रेक ऐं असांजा लिसनर बि क्रेक

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचण, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं जल्दी का नमस्ते। और यहाँ पर आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताते हैं, फैमिली प्रोग्राम हो जाते हैं और हमें ज्वाइन करते हैं 888 और फेसबुक पर। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं जो लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो लोग स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बत और समा तो अच्छा तो बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि ये जो इंस्टाग्राम होता है ये कितने ग्राम का होता है, बताएं तो जरा पता तो चलिए। बिल्कुल जी, मासूम से सिद्धरा का मासूमाना सवाल। ओके जी, आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। फेसबुक वाले लोग जो होते हैं ना वो पोस्ट को लाइक और शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। उनके अलावा जितना भी प्यारा प्यारा माण्हू असांखे ॿुधनि पिया बाबा ही प्रोग्राम तव्हां सभिनी माण्हुनि जो आहे। ऐं प्रोग्राम में अगरि तव्हां मौजूदु आहे त ॿुधाईंदा कयो त हा बजी असां गॾु आहियूं तव्हां सां ॿुधूं पिया तव्हांखे। और उनखां अलावा

लीजिए जयपाल भाई, बोले बोले क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा विलेट मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से, मोहम्मद हारून संदीलो कहते रऊफ मक्सी का गाना सुनाए। हाजिर एना जो सब गाना जी फरमाश करना तो किंजा किंजा गाना हलाई दो। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते अस्सलाम वालेकुम बादी सिद्रा मुस्कान शो नाइस है। सॉन्ग सुनाए मुमताज मौलाई का जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। सॉन्ग कुछ बोले यो गानो बिल्कुल बुद्धो आ पर थोड़ो मुखे अजीब तो लगे। अई तां खबर अजीब गाना मां पाने प्रोग्राम में नया

असां बाबा जिंदगी इंजॉय कंदा आहियूं, बिल्कुल जिंदगी इंजॉय कयूं। जेको मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधंदो हूंदो उहो सभु वाकई मूंखे लॻंदो आहे पंहिंजी ज़िंदगी इंजॉय करण वारा माण्हू आहिनि। और ये बिलाल अली हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते मोहतरमा गानो ॿुधराईंदा छोथो नाराज़ थिए तू। अच्छा ठीकु आहे, मां ॾिसां थी कहिड़े सिंगर जो गानो आहे। बिल्कुलु हलाए वठूं था, मिली वियो त साजिद अली हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम जी कहते हैं। हाँ हाँ आपको वेलकम कहते हैं। फरवा के दी आज मैडम का मूड बड़ा जबरदस्त है। हाँ जी बस आज ही होगा, कल वरी सागोड़ो मूड कल हो लगे तो तुम मुझे नजर नहीं सरींदा आयो।

अच्छा वही बात जयपाल भाई कहते हैं कल भाऊ सेठ थी अच्छा क्या हुआ था नहीं हुआ गाल एकड़ो डी मुझे मूड सही तो रहे बेड़ी वेड़ी उदास आया हलाए जो हाँ अजो दिसो मतलब अजो सही मूड आ वरी सुभाणे ई हुंदो हीअं न जी अॼु आहे मतिलब जे कल्ह हुयो अहिड़ो की दी यार जवाब ना में इंस्टाग्राम यूज़ करती हूं और मुझे ग्राम का पता भी नहीं है सही आहे सही आहे वोट हाची गुलाम ख़ास के लिए लग झंडो मरी खां कुर्बानी ख़ास के लिए अवां जो आवाज़ मिठो ऐं सुहिणो आहे ओके थैंक यू

हकीकत ही आहे बिल्कुल कुझु माण्हुनि जे प्रोग्राम में हुजण सां बि मुंहिंजे मूड ते फ़र्क़ु पवंदो आहे अला हकीकत अथव और साजिद हुसैन सुमरो वालेकुम असलाम भा तव्हां असांखे ॿुधो पिया डीआईजी ऑफिस लाड़काना खां शाहिब बाबा जो गानो बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदा थैंक यू तव्हां सां गॾु आहियो

0: हाँ हाँ हिदायत अल्लाह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई। मुमताज मौला की ना कुछ गाने अच्छे हैं।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तेंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वडी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असाजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुवते मुदाफत जे वधायण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: खुशख़बरी खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
9: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
8: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
10: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम अस्सी। बिल्कुल जी, आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं। तो आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग मेरे साथ ना फेसबुक पर मौजूद है वो पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। उन्हें के अलावा मोह जमा का सवाल पुछो आए तो मुख्य बुधायो इंस्टाग्राम जो आए वो केतरे ग्रामीण जो है सवाल पुछो

जाए बदा कसम गई। बहुत ही अच्छा सा गाना जो कि हम इंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं, तो बिल्कुल जी आप लोगों के साथ बातें करेंगे। और हाँ बिल्कुल अच्छा, तो ये हमारे साथ है महबूब अली मोरो सिटी से, कहते हैं लाड़काना की कूंज, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, हाय आपके प्रोग्राम की क्या बात है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। कूंज फायजा का नया गाना सुना फायजा हले पई बुदोस फायजा के, और कहते हैं थैंक्स सो नाइस ऑफ यू कूंज, थैंक यू सो मच, ये आपकी मोहब्बत है। और ये प्यारे भाऊ कहते हैं मेरी बात भूल गई कि टेंशन लेने का भी नहीं और देने का भी नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल, ये बात तो मुझे याद है मेरे प्यारे भाऊ। और गोट मोहम्मद थीबू का हाबी बोला, थीबू कहते हैं सॉन्ग बुध रहा चंडर जो टुकड़ो लगे तो अजय तो तू जानी तो मोला, यो तो मुखा विसरी।

चले जी बिल्कुल टाइम बची हो तो सभी सा गाना हलए वी पर हाँ गानों एडो वो हों टाइम असा प्रोग्राम जो सफा ओ एतरो आई कड़ा कड़ा गाना मां हलाया सो चलो जिनो रेजी वे तो पंज बजे वे प्रोग्राम में हलए वी उनका अलावा ही एक गानो आ जो शाहिद बब्बर की आवाज में है शाहिद बब्बर के गाने की फरमाइश भी कें करी हुई सो ही गानों उनके डेडिकेट क्यों था।

नहीं बाबा, सॉफ्टवेयर की बात मत करो बाबा, मत करो। वो गाला ना हो तो गया है पर अगला मनता नहीं है, मनता नहीं है। मंजन बड़ी गाला है। और चाचा कहते रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज नो, और हमेशा सच का साथ दें बेटा। बिल्कुल जी, सच का साथ देंगे बुधायो के दिन। केर तो सच गाला है। उन्हें जो साथ देना हो आसान के।

0: हाँ जी वाह, बहुत ही प्यारा सा गाना आप सुन रहे हो। नखा इलावा फहीम सैया मगाल के समझी वयस और मोहम्मद समान भाई के टॉपिक जितना जुबान पे लफ्ज इंस्टाग्राम का वेट भारी है उतना इंस्टाग्राम का वेट भी है। अच्छा दिमाग का रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं बहन शो में आप सबको भाई बहनों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और जवान मोहम्मद बचल शंबानी भाई हमें सुन रहे हैं तो शंबानी भाई को भी वेलकम कहते हैं। ओके जी, केसर भी हमारा शो सुन रहे हैं, केसर आपको भी वेलकम कहते हैं। फरवाल इतनी सिस्टर आरजे सिद्रा मुस्कान, आपकी कंपेयरिंग कॉम्बिनेशन बड़ी जबरदस्त है, सुपर डुपर ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू। और हैप्पी आ चुकी है, अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट एंड क्यूट आरजे, क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है, खैर से आ गई इस प्यारे शो में, वेलकम टू शो जाना। ओके, आप स्कूल से वापस आ गई होंगी तो आपको वेलकम कहते हैं। असे नन लाड़का ना की रानी ना आया, मां घर जी रानी आया।
1: बाब महेश्वर जड़ो माहू को मिलई शल,
0: बस यो भी ना यो तो ठहे, मैं उनके दिल की रानी हूँ बस।
1: गन जी राहते को मैं हड़ में
0: जिका गाल मजो भी ने।

ओके जी ॾाढो भलो गानो जेको असां एंजॉय कयोसीं ॿियो गानो असांजे लिस्ट में आहे बिल्कुल ही बि असां ॿुधंदासीं बिलाल हिन गाने जी फरमाइश करे छॾी हुई मूंखे लभे कोन पियो पर सम्झो त अच्छा ही वारो गानो हूंदो सही सही

0: ਗੁਜੀਆ
1: ਚਾਚਾ ਛਾਜੋ ਆਸਰੋ
0: ਰੋਜ਼
1: ਸੇਂਗ ਨੂੰ ਆਸਰੋ
0: ਰਤ ਜਾਨੀ ਰਤੋ ਅਖੜੇ ਨੇ ਮਵੇ ਠੋਹਾਰੀ ਦੇ ਹਣੇ ਸੋਚੋ
1: ਆਏ ਹਾਏ। अच्छा ये हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं सिद्रा शो ऑसम ऑलवेज आई एम हिरा हिरा हमारे साथी और हिरा आपने आगे जो लिखे सब ठीक है बस बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ऐसे ही प्रोग्राम को पसंद करती रहे और किशोर भाई कहते हैं मैं कराची का हूँ लेकिन वो लाहौर की नहीं है वो किथा की है बुधायो और साजिद भाई कहते हैं हम दोनों बिल्कुल पाकिस्तानी है अच्छा हिरा कहती है चलती का नाम मस्ती रुकती का नाम खटारा बिल्कुल बिल्कुल

0: एॾा ॾुख आहिनि माण्हुनि जी ज़िंदगीअ में. अलाह अच्छा जयपाल भाई, कहते भाउ रात को हमारे सिटी में हवा आई थी, अनुष्का ने बताया था यहाँ का मौसम नाइस है. हाँ रात तूफान आयो, तूफान
1: अच्छा.

देता। अच्छा हिरा के दी, राहत का कोई भी सॉन्ग प्ले करना, डेडिकेट आरिफा, रिमशा, उरूसा एंड फरहान। अच्छा चलिए जी, मैं देखती हूँ अगर अभी नहीं प्ले हो सका तो हम शाम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनेंगे, ठीक है। और बहुत शुक्रिया स्वीटी, आप हमारे साथ हैं। और जी ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रेक जिसकी हमें फरमाइश कर दी थी अदा फहीम। मुख्य अदा चवड़ी डो भलो लगन हुआ है अदा सुठो साउंड कंदो आहे।

की बात तो हमने नोटिस ही नहीं करी, दोनों निदड़ियां प्रोग्राम में नहीं आ रही, एक निदड़ी तो पता नहीं कहाँ गायब है, दूसरी निदड़ी भी गायब हो गई मेरी से। अच्छा मायरा तांजो गानो हलायो जो ता बुधो कोन, इन में मुझे कड़ी गलती है। अच्छा रशीद को स्वादरी मत अच्छा किशोर भाई कहते नब्बा अगर मुंह नालो खयो ये भी दिन हुआ अच्छा।

0: दो दिल मिले।
1: भाई रड़ियों का पैकेज खत्म नहीं हुआ, गाना एड़ा फरमाइश कंदा मा छा गया है ना, गाने में रड़ियों क्या ना मानू चरियो समझूंगा। मूड तो असाने भलो है पर गाना में तो हाँ। भला भला फरमाइश कर जैसा रड़ियों करे सको असान के अरमान दिल में रेजी था वने नुए पूरा थे। ये न क्यों बाबा ये न कंदा करो। रमजान भा तुम मोहब्बत प्रोग्राम बुध पाया। गुलाम हुसैन हेलो हेलो और मोहम्मद अली खोसो भाषा से गड मौजूद आए वालेकुम अस्सलाम। फहीम कहते भाऊ ताने भी तूफान आयो छा रात छो मैं पेरिस में रही आया छा।

0: अच्छा जयपाल भाई कहते हैं कि भाऊ अब कुछ काम।
1: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पीटीएलएफ जे सॾु ते उस्तादनि जा मुज़ाहिरा मटियारी सेवण पीर जो ॻोठ में प्राइमरी उस्तादनि एहतजाजी मुज़ाहिरा करे धरणा आया। अॻवाणनि चयो आहे त सर्विस स्ट्रक्चर उस्तादनि जो जाइज़ हक़ आहे, देर ऐं कोताही खे क़बूल न कयो वेंदो। सर्विस स्ट्रक्चर जे नोटिफिकेशन ताईं जिदोजहद जारी रखंदासीं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
10: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
11: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
10: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
10: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
11: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
10: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
11: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
8: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
8: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576
8: जी हाँ 2315525786
4: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अक्सर वालदे ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301343842।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर मान जो सवाल हों असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 साल तई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ, हाई रिस्क हुंदा आन। उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तवा के वैक्सीन जे लाए उम्र जी हद कोने कैं जगह वैक्सीन कैं उम्र जे पोलियो लगी सके तो कैं उम्र जे वैक्सीन करे सके पर रेशियो वधी का 10 साल के घट आ तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GAFM 90.4।

ब्रिगेड जनरल हुसैन मोबी चयो आहे त ईरान खे जंग मैदान में कामयाबी मिले आहे त मुआशी मैदान में शोर न करे आ। ईरानी फौज दुश्मन खे पोइते हटण ते मजबूर कयो आहे। जंग में तेहरान कामयाब थियो आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात। सिंध जे मामलनि ऐं जारी तरक़ियाती मनसूबनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल। ॿिन्ही अॻवाणनि दिलचस्पी वारनि मामलनि ऐं मौजूदा सियासी सूरत हाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। रवादारी ऐं सियासी मशावरत वारो सिलसिलो जारी रखण ते इतफ़ाक़। राणा सना लाइ मोहम्मद औरंगज़ेब आज़म नज़ीर तारण अहमद चीमा अली परवेज मलक शीज़ा फातिमा ऐं ॿिया बि मुलाक़ात में मौजूद। आज़ाद कश्मीर जे कानून साज़ असेंबलीअ जे मखसूस सीटनि लाइ पोलिंग जो अमल मुकमल। नून लीग 8 सीटनि मां 6 सीटनि ते कामयाब। पीपुल्स पार्टी 2 सीटूं हासिल करे सघी। औरतुनि जे 5 मखसूस सीटनि मां 3 ते नून लीग ऐं 2 ते पीपुल्स पार्टी कामयाबी माणी। आलमन ऐं टेक्नोक्रेट जी सीट बि नून लीग हासिल करण में कामयाब थी वई। मखसूस सीटनि ते इलेक्शन बाद चूंडियल शायतलनि मेंबरनि हलफ खणी वरितो। आज़ाद कश्मीर असेंबलीअ जे स्पीकर नून लीग चूंडियल मेंबरनि खे हलफ खणायो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रज़ा केस जे जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़े छॾी। जस्टिस उमर सियाल कमीशन जी सरबराही कंदो। सिंध हुकूमत गुज़िरियल ॾींहुं चीफ जस्टिस खे वापारी मीर रज़ा जे जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़ण लाइ ख़त लिखियो। मीर रज़ा क़तल केस में अदालती कमीशन जोड़ण ऐं GIT क़याम लाइ वारसनि जी दरख़्वास्त सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी। जस्टिस अदनान करीम मेमण जे धुरिन खे नोटिस जारी करे छॾिया। 31 अगस्त ते जवाब तलब। दरख़्वास्त मीर रज़ा जो पोस्टमार्टम कंदड़ डॉक्टर उसामा डॉक्टर सीमा केस जी जांच कंदड़ टीम जे मेंबर्स समेत 19 ॼणनि खे धुर बणायो वियो। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील जिबरान नासिर चयो आहे त पुलिस जी जांच अञा ताईं कंहिं हतमी नतीजे ते न आहे पहुती। अदालती कमीशन सां केस जी जांच ते नाकारी असर पवंदा। कमीशन जी इंक्वायरी खे अदालत में चालान तौर पेश नथो करे सघिजे। गडियल जांच टीम क़ाइम करण जी ज़रूरत आहे।

0: सिंध में नवन सूबन के पीपल्स पार्टी खुले तौर से रद्द किया। सिंध जो विरांगो कबूल न है। सिंध जा मानू सिंध के पांजे वतन समझन था। सिंध सदन का आबाद आए आबाद रही। सिंध के तालीम वाले वजीर सरदार शाह है तो उस्ताद की फीस फ्रेम ऐप के छह जिलों में लागू कई वो है। कुछ मानन का फेस फ्रेम ऐप हजम नथी थे। जदीद टेक्नोलॉजी मदद वठंदासी। फेस फ्रेम सिर्फ उस्ताद लाए ना पर समूरे अमले लाए आए। मिठी में थरपारकर बार एसोसिएशन पारा सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ अदालती कार्रवाई जो बाइकॉट रैली कड़ी धरनो बिहो वो। वकीलन जो चवण है तो सिंध हजारन साल का मौजूद है। संदस तहजीब के टोड़े न तो सकजे। सिंध जो विरांगो कें भी सूरत में कबूल न कयो वेंदो। फहमीदा पितापी अगवा के सजी सिंध हाईकोर्ट सखर में बुधनी। डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब पठान एसएसपी सखर अनवर खेतरान ए धुरन जा वकील पेश। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ते बदल सिंगल बेंच। पुलिस की कारकर्दगी के सख्त कावड़ इजहार कंदे डीआईजी सखर के छंड। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना रिमार्क्स डिना तो अवां की कारकर्दगी के डिसी लगे तो इन डिवीजन के पुलिस की जरूरत ही ना। जैसे अवां अदालती हुकुमन ते अमल ना कराए सको तो उदे ता इस्तीफा दियो। बी सूरत में अदालत डीआईजी सखर के हटाने लाय हुकुम जारी कर सके थी। जैसे गुम थियल औरत के बाजियाब ना कराए सको तो आईजी सिंध के अदालत में तलब कंदासी। अदालत केस की बुधनी 7 सितंबर तक मुलतवी कंदे औरत के अदालत में पेश करने हुकुम दिनो। सिंध के मुख्तलिफ शहर में आबाद घर जो पानी खोट खिलाफ एहतजाज। वगण के मुख्तलिफ शाखन में पानी खोट खिलाफ आबाद घर सरापा एहतजाज। इंडस हाईवे ते धरनो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो।
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा वॾा निज़ामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
9: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371-1800-3920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
11: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
11: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
11: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 0331-252-5786।
6: जी हा, 2315-2576।
11: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। त इंदो आसान जवाब यो आ, ही बार भी असां वटि अल्लाह ताला जी वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
0: अपना शहर, अपना घर, माटली और

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंह के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842।
6: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अघ मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125252786
4: जी हाँ 2315525786
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
5: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरानी घरेलू वजीर सिकंदर मोमनी से अहम मुलाकात, घरेलू वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात दौरान मौजूद। ISPR मौजे मुलाकात दौरान पाकिस्तान ईरान विच में बेतरफन लागापन इलाकाई सलामती ए विचोबर की मौजूदा सूरत हाल के ख्याल की डेवट कई हुई। पाकिस्तानी क्यादत खिते की अमुन इस्तेहकाम ला सफारती हल कढ़ने ते भी जोर भर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ए मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो विच ओभर में तकरार के पुरअमुन हल वाल कोशिश जो हिस्सों है। अमरीका के ईरान खिलाफ डी डे की शुरूआत थी वही। अमरीकी नायब सदर जी डी वेंट्स है ईरान वट आलमी बहरी रस्त की मुकम्मल तौर बंदिश की सलाहियत मौजूद न है। मुआशी नाकाबंदी तेहरान के तबाह कर छींदी। अमरीकी नाणे वाले वजीर स्कॉट बेसेंट है अस आखिरी मरहले में दाखिल आयु। दुश्मन खिलाफ सब का वही मुआशी कार्रवाई शुरू कर छी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जो एटमी प्रोग्राम दफन कर छ। अमरीका के मुआशी हमले जो ऐलान फौजी महाज से नाकामी जो एतराफ़ है। ईरान पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुश्तबा है तो अमरीका के जंगी मैदान में कामयाबी मिले हा तो मुआशी मैदान में शोर न करे हा। ईरानी फौज दुश्मन के पोते हटने से मजबूर कर जंग में तेहरान कामयाब थो है।

0: सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात, सिंध जे मामलनि ऐं जारी तरक़ियाती मनसूबनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल, ॿिन्ही अॻवाननि गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ऐं मौजूदा सियासी सूरतहाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई, रवादारी ऐं सियासी मुशावरत वारो सिलसिलो बि जारी रखण ते इतफ़ाक़। राणा सनाउल्लाह, मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, अहमद चीमा, अली परवेज़ मलिक, शिंदा फातिमा ऐं ॿिया बि मुलाक़ात में मौजूद हुआ। आज़ाद कश्मीर जी कानून साज असेंबली जे मखसूस सीटनि लाइ पोलिंग जो अमल मुकमल, नून लीग 8 मखसूस सीटनि मां 6 ते कामयाब, पीपुल्स पार्टी 2 सीटूं हासिल करे सघी, औरतुनि जी 5 मखसूस सीटनि मां बि 3 ते नून लीग ऐं 2 ते पीपुल्स पार्टी कामयाबी हासिल कई, आलिम ऐं टेक्नोक्रेट जी सीट बि नून लीग हासिल करण में कामयाब। मखसूस सीटनि ते इलेक्शन बाद चूंडियल 46 मेंबर्स हलफ खणी वरितो, आज़ाद कश्मीर असेंबली जे स्पीकर 9 चूंडियल मेंबर्स खे हलफ खणायो। सिंध हाईकोर्ट जे चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रज़ा केस जी जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़े छॾियो, जस्टिस उमर सियाल कमीशन जी सरबराही कंदो, जांच लाइ महीने जो वक़्त मुक़रर। कराची जे मेयर मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त अदालती कमीशन ते मीर रज़ा जे वारसनि खे सहकार करणो पवंदो, न त हीउ सिलसिलो हलंदो रहंदो। जांच दौरान थियल कोताहिनि खे साम्हूं अचणु घुर्जे, पुलिस ऐं जांच इदारा कमीशन जी मदद कंदा। हुकूमत जी तरजीह मीर रज़ा जे माइटनि खे मुतमिन करणु आहे। मीर रज़ा क़त्ल केस में अदालती कमीशन जोड़ण ख़िलाफ़ ऐं GIT जी क़याम लाइ वारसनि जी दरख़्वास्त सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी, जस्टिस अदनान करीम मेमन दरिन खे नोटिस जारी करे छॾिया, 31 आगस्त ते जवाब तलब। दरख़्वास्त में मीर रज़ा जो पोस्टमार्टम कंदड़ डॉक्टर उसामा ऐं डॉक्टर सुमैया केस जी जांच कंदड़ टीम जे मेम्बर समेत 20 ॼणनि खे दुर बणायो वियो। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील जिब्रान नासिर चयो त पुलिस जी जांच अञा ताईं कंहिं हतमी नतीजे ते नाहे पहुती, अदालती कमीशन सां केस जी जांच ते नाकारी असर पवंदा, कमीशन जी इंक्वायरीअ खे अदालत में चालान तौर पेश नथो करे सघिजे, गॾियल जांच टीम क़ाइम करणु ज़रूरी आहे। सिंध में 9 सूबनि खे पीपुल्स पार्टी खुलियल तौर ते रद्द कयो, सिंध जो विरांगो क़बूल न आहे, सिंध जा माण्हू सिंध खे पंहिंजो वतन समझनि था, सिंध सदियुनि खां आबाद आहे ऐं आबाद रहंदी। सिंध जे तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह चयो आहे त उस्तादनि जी फीस फ्रेम ऐप खे छहनि ज़िलनि में लागू कयो आहे, कुझु माण्हुनि खां फेस फ्रेम ऐप हज़म नथी थिए, जदीद टेक्नोलॉजी जी मदद वठंदासीं, फेस ऐप सिर्फ़ उस्तादनि लाइ न आहे पर समूरे अमले लाइ आहे। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ जी लताड़ ख़िलाफ़ एहतजाज कंदड़ उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि जे कैंप ते क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पली जो जी आमद, शागिर्दनि सां यकजहतीअ जो इज़हार। अयाज़ लतीफ़ पली जो चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हिकु बादशाही इदारो बणिजी वियो आहे, जिते मथां खां हुकुम अचण वारनि खे पास कयो वञे थो, रुगो मरसूं सिंध न ॾिसूं जा नारा हणण सां नौजवाननि खे रोज़गार ऐं अख़्तियार न मिलंदा, अमली क़दम खणण ज़रूरी आहिनि, अदलिया खे बि नोटिस वठणु घुर्जे। मिठी में थरपारकर बार एसोसिएशन पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बॉयकॉट, रैली कढी धरणो बिहायो वियो। वकीलनि जो चवणु आहे त सिंध हज़ारनि सालनि खां मौजूद आहे, संदसि तहज़ीब खे टोड़े नथो सघिजे, सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। पामीदा पितापी अगवा केस जी सिंध हाईकोर्ट सखर में ॿुधणी, DIG सखर, SSP सखर ऐं धुरिन जा वकील पेश, अदालत पारां पामीदा लिगारी जी अदम बाज़ियाबी ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। DIG सखर खे बि छॾु, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना रिमार्क्स ॾिना, तव्हांजी कारकर्दगी ॾिसी लॻे थो त हिन डिवीज़न खे पुलिस जी ज़रूरत ई न आहे, जेकॾहिं अवां अदालती हुकुम ते अमल नथा कराए सघो त उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियो, ॿी सूरत में अदालत तव्हां खे हटाइण लाइ हुकुम जारी करे सघे थी, जेकॾहिं गुम थियल औरत खे बाज़ियाब नथा कराए सघो त IG सिंध खे तलब कंदासीं, केस जी ॿुधणी 7 सेप्टेम्बर ते मुलतवी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
7: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 03125257 86
2: जी हाँ 2315525786
7: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: करे जाहिर नहीं दो कर लिखण में थे न कोताही

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैडम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु। आहे।
7: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
6: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: अक्सर मान जो सवाल हूं असा सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तीन छोती डी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तंज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके तो रेशो 10 साल का घट आ तंज कर असो रिक्वेस्ट आए सभी के बूस्टर डोज लगे।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ जे लतार खिलाफ़ एहतियाज कंदड़ उम्मीदवारनि ऐं शागिर्दनि जी कैंप ते क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पलीजो जी आमद, शागिर्दनि सां यकजहती जो इज़हार। अयाज़ लतीफ़ पलीजो चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हिकु बादशाही इदारो बणिजी वियो आहे, जिते मथां खां हुकुम अचण वारनि खे पास कयो वञे थो। रुगो मरसू सिंध न ॾिसूं जा नारा हणण सां नौजवाननि खे रोज़गार ऐं अख़्तियार न मिलनि था। अमली क़दम खणणु ज़रूरी आहिनि। अदलिया खे बि नोटिस वठणु घुरिजे। मिठीअ में थरपारकर बार एसोसिएशन पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बाइकॉट, रैली कढी धरणो हयो वियो। वकीलनि जो चवणु आहे त सिंध हज़ारनि सालनि खां मौजूदु आहे, संदसि तहज़ीब खे टोड़े नथो सघिजे। सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबब न बणंदो।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻारायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: ख़ुशख़बरी ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
9: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन ता असन दरे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन तवरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तेंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असां वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आए बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुवते मुदाकत जे वधाण में मदद करे थी 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाय 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लगराइण लाइ खुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ए मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरों विच ओवर में तकरार की पुरमुन हल वारी कोशिशों हिस्सों है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पेर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जो बेहतर थिए थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उन में का भी सुई इस्तेमाल नी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जे बार के करा तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्ज में जो महफूज रह।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
7: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125257866।
5: जी हा, 2315525786।
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

जो कोम जियारे वो जियंदो रहंदो, जो आम उजारे वो जियंदो रहंदो। जो कोम जियारे वो जियंदो रहंदो, जो आम उजारे वो जियंदो रहंदो। मुखे तारीख तकदीर दिनी पक्का, जो सिंध संवारे वो जियंदो रहंदो।

GFM 90.4 मातली लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम आहे रस रिहाण ऐं रस रिहाण खणी आऊं अवां जी खिदमत में हाज़िर अवां जो आरजे मीर मुर्कवाडो।

जिते जिते भी असो ये आवाज अवां ताई पहुंचे पियो उन्हनि समूरनि सिंध वासियुनि जी खिदमत में असां हाज़िर आहियूं ऐं असांजो सिक भरियो सलाम अवां खे क़बूल पवे। अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त रस रिहाइण जो सफ़र इनशाला ताला राति जो 9 वॻे ताईं जारी सारी रहंदो। अवां सां कंदासीं अवां जूं ई ॻाल्हियूं, हितां हुतां जूं ॻाल्हियूं। ऐं गॾो गॾु अवां ते पहुचाईंदासीं उहा ख़ूबसूरत मौसीकी जेके अवां ॿुधणु चाहियो था। जेकॾहिं अवां बि अॼोके प्रोग्राम में हिसो वठणु चाहियो त उन जे लाइ बिल्कुलु तरीक़ेकार आसान आहे। अवां मैसेज करे सघो था। मैसेज करण जो तरीक़ो असांजे जेके पुराणा ॿुधंदड़ साथी आहिनि उन्हनि खे बिल्कुलु मालूम आहे, पर जेके नवां साथी जिन असांखे ज्वाइन कयो आहे उन्हनि जी ख़िदमत में अर्ज़ु कयूं त MTI पंहिंजे मोबाइल जे मैसेज ऑप्शन में वञी करे अवां लिखंदा MTI। MTI मुखफ़ आहे या शॉर्ट फॉर्म आहे मातली जो। उन खां पोइ थोरी विथी, उन खां पोइ पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, ऐं उन खां पोइ पंहिंजा नाला ऐं को पैगाम जेकॾहिं ॾियणु चाहियो त उहो बि लिखी सघो था। ऐं जंहिं नंबर ते मोकिलींदा उहो नंबर आहे 88 81 3x8 ऐं 1 888 1 जी आहे 88 81। साईं मुंहिंजा ज़िंदगी सफ़र आहे, हीउ आवाज़ जो सफ़र आहे, ऐं आवाज़ जो सफ़र ऐं आवाज़ जो जेको रिश्तो आहे उहो ॾाढो मज़बूत रिश्तो थींदो आहे। ॻाल्हि कंदासीं जेकॾहिं सफ़र जे मुख़्तलिफ़ माण्हू पंहिंजो सफ़र मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां कंदा आहिनि। अॻे त माण्हू वधीक पंधु कंदा हुआ, पर हाणे पंधु घटि कयो वञे थो ऐं नतीजे में सिहत ते बि उन जा असर पिया आहिनि। अॻे जेतिरा माण्हू पंधु कंदा हुआ त उन्हनि जूं उमिरियूं बि वधंदियूं हुयूं ऐं उन्हनि जी सिहत बि सुठी हूंदी हुई। सफ़र जॾहिं बि कयो, जंहिं बि गाॾीअ में कयो, जंहिं बि गाॾीअ ते कयो, त महिरबानी करे पंहिंजो ख़्यालु रखो, ईंदड़ वेंदड़ जो ख़्यालु रखो ऐं एहतियात कयो। असां हुनजे लाइ प्ले कयो आहे फौज़िया सूमरो जो ख़ूबसूरत गीत। अवां असां सां ई गॾु रहिजो, ॿुधंदा रहो GFM 90.4 मातली सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

रसरियाण प्रोग्राम में एक दफो वरी अवां के चवंदासीं भली कार असांजो आवाज़ जे तां जेकॾहिं अवां ताईं पहुचे पियो त अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त प्रोग्राम रस रिहाण अवां जी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे जी एफ एम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो मां। हिन प्रोग्राम में अव्हांजो ऐं असांजो साथ रहंदो इनशाला ताला राति जो 9 वॻे ताईं ऐं अॼु आऊं आहियां अव्हां सां गॾु ऐं मुंहिंजो नालो आहे मीर मुर्क वाढो।

साईं मुंहिंजा प्रोग्राम जी शुरूआत में फौजिया सुमरो जो खूबसूरत आवाज़ अव्हां जे नाम कयोसीं। फौजिया जे गीत जो आख़िरी जेका मिसरा आहे उहा रहिजी वई, कमर्शियल अचणा हुआ फिक्स टाइम वारा, इन करे असां उहा अव्हां ताईं

पैदा थिया आहिनि जिन पंहिंजो नालो कमायो, जिन पंहिंजे नाले जी अहमियत खे सुञातो, जिन पंहिंजे नाले जी अहमियत खे बरकरार रखियो। त इन करे माण्हू पंहिंजो नालो पैदा करण जे लाइ मुसलसल महिनत करे, कोशिश करे ऐं जाखोड़ करे, हूअं बि ज़िंदगी जाखोड़ियो नालो आहे। मातली खां ख़ालिद नोतकाणी असांजो पुराणो ॿुधंदड़ साथी आहे, सलाम चया अथनि ऐं वेलकम चयो अथनि। त ख़ालिद, असां पाण तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था, वेलकम चऊं था, तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हांजो ई पंहिंजो प्रोग्राम आहे रस रिहाण, त असां सभिनी ॿुधंदड़नि सां हिन प्रोग्राम में रिहाण कंदा आहियूं, ॻाल्हियूं कंदा आहियूं, त अवां असांखे यादि कयो। पहिरियों पहिरियों मैसेज अव्हांजो पहुतो आहे, अव्हांजी महिरबानी। कुनरी खां चोवन कुमार कोहली ऐं संगीता पारस जो मैसेज बि पहुतो आहे, त चोवन अव्हांजी वॾी महिरबानी। अव्हां बि आवाज़ जी दुनिया जा पुराणा ॿुधंदड़ आहियो, असांजो आवाज़ अव्हां ताईं पहुतो ऐं अव्हां असांखे अहसासु ॾियारियो त अव्हां असांखे ॿुधो पिया, हिन जे लाइ असीं अव्हां जा थोराईंदा आहियूं। जेकॾहिं साथियो अव्हां बि हिन प्रोग्राम में हिसो वठणु चाहियो था, त उन जे लाइ अव्हांखे करणो पवंदो हिकिड़ो मैसेज। मैसेज करण जो तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान आहे। तव्हां पंहिंजे मोबाइल जे मैसेज ऑप्शन में वञी करे हिकिड़ो अखर लिखंदा MTI लिखण खां पोइ थोरो स्पेस, उन खां पोइ पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, उन खां पोइ को अहिड़ो पैगाम, ऐं जे नंबर ते मोकिलींदा उहो नंबर आहे 8881, जीअं 888-1-8881। अवां खे वठी था हलूं वरी मौसीकी दुनिया में, अवां ते पहुचायूं था हिकिड़ो ॿियो ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं मौसीकी जे हवाले सां। अवां ज़रूरु ॿुधाइजो त अवां खे कीअं पई लॻे।

बेवफ़ा थींदे मूं इहो सोचियो न हो। कॾहिं कॾहिं माण्हू सोचींदो बि न आहे, या जेको कुझु सोचींदो आहे उहो थींदो न आहे, ऐं जेको थींदो आहे उहो माण्हू सोचींदो न आहे। ज़िंदगी में इहे सभु शयूं थींदियूं आहिनि, ऐं ज़िंदगी जे लाइ जेको ज़िंदगी जो हिकिड़ो फ़लसफ़ो आहे, ज़िंदगीअ खे समुझणु ज़रूरी आहे। जिन माण्हुनि ज़िंदगीअ खे समुझियो उहे कॾहिं बि नाकाम न थिया। हिकिड़ो मैसेज पढ़ंदासीं। फहमीदा असांखे यादि कयो आहे, ॻोठ या शहर जो नालो त न लिखियो अथनि, सलाम चया अथनि, लिखियो अथनि कहिड़ा हाल आहिनि। बिल्कुलु असां ठीकु आहियूं। फहमीदा मां लिखियो आहे त आऊं हफ़्ते में हिक खां वधीक शो करियां, त फ़िलहाल मूंखे जेको टाइम मिले पियो मसरूफ़ियत जे करे उहो फ़िलहाल हिकिड़ो ॾींहुं आहे, पर कोशिश कंदुसि त इनशाला ताला वधीक शो बि करियां, त अव्हां खे ॿुधण में आसानी थिए। अव्हां फहमीदा असांखे यादि कयो, वॾी महिरबानी।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूनिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

कमर्शियल स्पॉट्स पुजाणा एक दफो वरी रसरियाण प्रोग्राम में अवां के चाहूं था भली कार रसरियाण वही खिदमत में पेश कयो पियो वञे जी एफ एम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो में

साईं मुंहिंजा थोरी देरि पहिरीं प्रोग्राम में ज़िक्र कयोसीं सफ़र जो, त मुख़्तलिफ़ माण्हू सफ़र पंहिंजो कंदा आहिनि कमकार जे हवाले सां ऐं रोज़मरह जी ज़िंदगी जो कार वहार हलाइण जे लाइ माण्हू खे सफ़र करणो पवे थो। पर जेका ॻाल्हि मूं तव्हां सां करण पे चाही उहा इहा आहे त सफ़र जे दौरान एहतियात ज़रूर कजे। ॾिठो इहो वियो आहे त एहतियात खां कमु घटि थो वरितो वञे मोटरसाइकिल ते, ख़ासतौर ते अॼुकल्ह जा जेके नौजवान आहिनि उहे जेकॾहिं ॾिठा विया आहिनि त नौजवान एतिरो त तेज़ मोटरसाइकिल हलाइनि था जो उन्हनि खे इहा ख़बर बि नथी पवे त असां किथे पिया हलायूं। असां वालदेन खे बि इहा गुज़ारिश कंदासीं, अर्ज़ु कंदासीं त पंहिंजे औलाद खे इहा नसीहत ज़रूरु कनि त जॾहिं बि मोटरसाइकल्स, बाइकूं या ॿियूं वॾियूं गाॾियूं हलाइनि था त एहतियात कनि, बचाइण वारी अलाह जी ज़ात आहे पर एहतियात असांजे हथ में आहे। छो त ज़िंदगी वॾी शइ आहे ऐं ज़िंदगी सां प्यारु ज़रूरु करणु घुर्जे।

अच्छा बियो मैसेज तव्हां जो वरी बियो पहुतो आहे, उन में फहमीदा बि अवां सां गॾु आहे। पहिरीं फहमीदा जो मैसेज अकेलो आयो हो, वरी तव्हां जो वरी उन खां पोइ गॾियल मैसेज अवां जो आयो आहे। लॻे ईअं थो त अवां गॾिजी प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं मुंहिंजी शायरी जे हवाले सां अवां चयो आहे तव्हां जे नाम कयां, त अॼु कोशिश कबी इनशाला ताला त अवां ताईं पंहिंजी शायरी पहुचायां। आहे त कम में आहे मिठू वारो, पर गुज़िरियल प्रोग्राम खां अव्हां जी फरमाइश अचे पई त कोशिश कंदासीं अॼु पूरी करण जी।

अवां बि इन प्रोग्राम जो हिसो बणिजी सघो था। इन जे लाइ अव्हां खे करणो पवंदो हिकड़ो मैसेज। मैसेज करण जो तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान आहे। अव्हां मैसेज ऑप्शन में वञी करे, जीअं मोबाइल जे मैसेज ऑप्शन में वञी करे लिखंदा MTI, MTI लिखण खां पोइ थोरी विथी, उन खां पोइ पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो, उन खां पोइ जे नंबर ते तव्हां मोकिलींदा, उहो नंबर आहे 88 81।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन सवाल की दा हैं तो जड़े असा जे बारन के पोलियो वैक्सीन लगी चुकी आ है तो हाने बाद में उनन के केड़ी जरूरत पड़े थी। मोजो नालो हाफिज मोहम्मद इस्लाम नूनारी आ है। इन जो जवाब बिल्कुल आसान है। ये असाजा जे बार हन तो असाजी मामूली गफलत के करे जिंदगी भर माजूर रहजी वजन था। अगस्त में दहन साल तीन जे बार आन पोलियो बूस्टर डोज जो है वो लाजमी लगराय। पोलियो जहा कुछ अगर जरात रहजी भी वह अल्लाह के हुक्म से खत्म थी वेंदा ए बचो हमेशा के लिए महफूज रहो एन लाइ भी माजूरी सबब न बनबो।
2: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

जीएफएम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो में एक दफो वरी अवां के चवंदासी प्रोग्राम में भली कार जिन मेहरबान हाणे हाणे असां खे ज्वाइन कयो आहे या रेडियो सेट ऑन कयो आहे। अॼुकल्ह रेडियो सेट त कुझु ॿुधंदड़नि वटि आहिनि, जेके असांजा पुराणा ॿुधंदड़ आहिनि उन्हनि वटि रेडियो सेट मौजूदु आहिनि, छो त उन्हनि खे रेडियो खां सवाइ प्रोग्राम ॿुधण जो मज़ो नथो अचे। पोइ उहे रेडियो पाकिस्तान जा प्रोग्राम हुजनि, एफएम स्टेशन्स जा प्रोग्राम हुजनि, त उन्हनि खे रेडियो सेट खां सवाइ प्रोग्राम ॿुधण जो मज़ो नथो अचे। बाक़ी ख़ासि तौर ते अॼुकल्ह MP3 वधीक आहिनि, MP3 ते FM स्टेशनूं हलनि थियूं, उन ते माण्हू वधीक ॿुधनि था, पंहिंजे मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कनि था उन ते ॿुधनि था, फेसबुक ते जेकॾहिं प्रोग्राम करे करे रखूं था त उहे बि माण्हू ॿुधनि था। बहरहाल हर हिकु जे ॿुधण जो तरीक़ेकार ऐं प्रोसीजर पंहिंजो पंहिंजो आहे ऐं पसंदि बि पंहिंजी पंहिंजी आहे, पर असांखे ख़ुशी आहे त अवीं असांखे ॿुधो था। रस रिहाइण में अवां जो असांजो इनशाला ताला साथ रहंदो राति जो 9 वॻे ताईं। आऊं ऐं अवां सां गॾु मूंखे चवनि था मीर मुर्क। साईं, मुंहिंजा ख़ूबसूरत मौसीकी दिन प्रोग्राम जो हिसो हूंदी आहे, पर अवां जा नाला ऐं ॻाल्हियूं बि अवां सां लाज़मी करणियूं हूंदियूं आहिनि। जॾहिं अवां जा नाला ईंदा आहिनि त असांजी कोशिशि हूंदी आहे त सभ खां पहिरीं अवां जा नाला पढ़ूं, छो त अवां असांजो हिसो आहियो ऐं प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो। ॻोठ खमू जोड़े जो खां लखा ॾिनो जोड़े जो असां सां गॾु आहे, साईं अवां जी वॾी महिरबानी। असांजो पुराणो ॿुधंदड़ साथी आहे ॻोठ हाजी ईसा जोड़े जे जो, हाजी अब्दुल करीम जोड़े जो। साईं अब्दुल करीम, अवां असांखे ॿुधो पिया, कनायो पिया, असांखे ॾाढी ख़ुशी थी। अॼोकी मौसीकी जे हवाले सां अवां लिखियो आहे त उहा बि अवांखे पसंदि अचे पई, त ही प्रोग्राम ऐं मौसीकी असां अवां जे लाइ पेश कयूं था। जॾहिं अवांखे इहे सभु शयूं वणनि थियूं त इन खां वधीक असांजे लाइ बि ख़ुशी।

ॻोठ हुसैन सूमरो लाखाटी खां ऐं हीउ ॻोठ आहे ॾंदे जे वेझो। उतां खां वॾेरो हुसैन सूमरो असांखे ॿुधे पियो ऐं वॾेरो कामरान सूमरो ऐं वॾेरो रिज़वान सूमरो अवां समूरा साथी असांखे ॿुधो पिया रस रिहाइण प्रोग्राम खे इंजॉय कयो पिया। अवां जी वॾी महिरबानी हुसैन साईं, हीउ प्रोग्राम अवांजो आहे, हीउ स्टेशन अवांजी आहे। यकीन करियो ॾाढी ख़ुशी थी, वॾी महिरबानी।

ॻोठ सवाली डंगड़ू डंदे खां, ही ॻोठ बि डंदे जे वेझो आहे, उतां खां असांखे यादि कनि पिया आसिफ अली ऐं बिलावल डंगड़ू। आसिफ साईं ऐं बिलावल, अव्हां जी महिरबानी, अव्हां सलाम चया आहिनि ऐं प्रोग्राम खे नाइस कोठियो आहे, त इहा अव्हां जी मोहबत आहे, असां कुझु न आहियूं। अव्हां जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जी शयूं लिखंदा आहियो त यकीन करियो असांखे कर्ज़ी करे छॾींदा आहियो। ॻोठ अलाह जुड़ियो खोसो आहे, सजाद ऐं वसीम ऐं उन्हनि जो वाल साहब उन्हनि सां गॾु हूंदो आहे, यूसुफ हैदर खोसो। अवां सभु प्रोग्राम ॿुधो पिया, इंजॉय कयो पिया, त यूसुफ साईं अव्हां जी वॾी महिरबानी, सजाद साईं अव्हां जी महिरबानी ऐं वसीम साईं अव्हां जी महिरबानी। हीउ रस रियाण अव्हां जो पंहिंजो प्रोग्राम।

टे साथी आहिनि, हुन जा नाला आऊं पढ़ां थो। ॻोठ जो नालो त लिखियल मूंखे नज़र न पियो अचे। पुनू सिंहड़ो, पुनू सिंहड़ो, मुज़म्मल ऐं हाकम अली। अवां प्रोग्राम खे पसंदि कंदे हिसो वरितो आहे, अवां जी महिरबानी। पुनू साईं, मुज़म्मल ऐं हाकम अली, अवां जी वॾी महिरबानी। ख़ालिद नोतकाणी जो हिकु दफ़ो वरी असां ताईं मैसेज पहुतो आहे मातली खां। ख़ालिद साईं, अवां लिखियो आहे त आऊं पंहिंजो को गीत प्ले कयां अॼु, फरमाश अलाज छो या वधंदी वञे। आऊं मियां मिठू थियण त नथो चाहियां, पर मूंखे लॻे थो अॼो के प्रोग्राम में अवां मूंखे मियां मिठू ज़रूर कंदव। इन ई ॻाल्हि ते रब नवाज़ ख़ासके अली कंध लोॾे मुंहिंजे भर में वेठल आहे, चवे पियो त हा तव्हां मियूं मियां मिठू ज़रूरु थियो ऐं पंहिंजो गीत पंहिंजी शायरीअ वारो प्ले कयो। ॾिसूं था

ॻोठ हामिद चांडियो ज़रदारी रोड खां, ऐं हिननि साथियुनि जा नाला आहिनि अब्दुल करीम चांडियो, वाजिद चांडियो, राशिद चांडियो, अब्दुल वाहिद चांडियो ऐं मोहम्मद हनीफ़ चांडियो ऐं नंढड़ी इरम चांडियो। अवां सभिनी खे प्रोग्राम पसंदि आयो ऐं अवां मौसीक़ी अवां खे वणी। अवां फौज़िया सुमरो खे ॿुधणु चाहियो आहे, पर फौज़िया सुमरो त असां प्रोग्राम जे शुरूअ में अॼु प्ले कयो आहे, ऐं मूंखे उमेद आहे त काफ़ी साथियुनि फौज़िया सुमरो जी आवाज़ में बिलावल ओठे जी शायरी ॿुधी हूंदी। असां अवां जे लाइ ख़ालिद हुसैन पेताफ़ी जो ख़ूबसूरत आवाज़ प्ले कयो आहे, ॾाढा प्यारा ॿोल आहिनि। दिलि जे कननि सां ॿुधी ॾिसो पोइ मूंखे ॿुधायो।

हिक दुनिया हेॾियूं कयूं ॿियूं तूं पहिरीं पाण न कर। खालिदुसन पिताब जो ख़ूबसूरत आवाज़ इस्माइल रेगिस्तानी जी शायरी अव्हां जे नाऊं कयूंसीं त कॾहिं बि कंहिंखे शिकायत जो मौको न ॾियो। इहो ज़िंदगी में कोशिशि करियो त कॾहिं बि कंहिंखे माण्हू शिकायत जो मौको न ॾिए। असांखे यादि कयो आहे सिटी मुया खां, जीअं मुयो शहर आहे, उतां खां शफ़ीक अहमद रिंद, मोहम्मद याकूब रिंद ऐं अली मुर्तज़ा रिंद असांखे ॿुधनि पिया। अव्हांजी वॾी महिरबानी।

ॻोठ इस्माइल वाढे खां बबलू वाढो, मुज़फ़र वाढो, ज़फ़र वाढो प्रोग्राम ॿुधनि पिया। नंढड़ी परिवेश बि हिननि सां गॾु आहे, नंढड़ी सिद्रा ऐं नंढड़ी गज़ाला बि हुन सां गॾु आहे। हफ़ीज़ वाढो, अवीं सभई प्रोग्राम ॿुधो पिया, अव्हांजी महिरबानी। राति जा अठ थियनि पिया, जीअं ई अठ थींदा त अव्हांखे KTN न्यूज़ ॿुधाईंदासीं। अव्हां केॾां बि न वञिजो, अव्हांजो ई असांजो रस रिहाइण में सफ़र जारी रहंदो इनशा ताला। राति जो 9 वॻे ताईं पाण कचहरी कंदासीं। अञा ख़ूबसूरत मौसीक़ी असांखे ॿुधाइणी आहे त अव्हां ॿुधंदा रहो GFM 90.4 मातली सिंध जो आवाज़।

वज़ीर आज़म पाकिस्तान ओलियो वैल्यू चेन पॉलिसी जो इफ्तिताह करे छो। तकरीब के खिताब कंदे शहबाज शरीफ चयो तो मुल्क में ज़रई इनकलाब लाइ हारन की भरपूर मदद कई वेंदी। 60,000 एकड़ से जैतून जो फसल पोखियो पियो वञे। जैतून के फसल के हथी डेई परदेही नाणो बचाए सकजे थो। हुकूमत हारन की मदद वारो सिलसिलो जारी रख।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी तहरान में ईरानी घरू वजीर इस्कंदर मोमनी साह मुलाकात, घरू वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात दौरान मौजूद। आईएसपीआर मौज मुलाकात दौरान पाकिस्तान ईरान विच में तरफन लागापन इलाकई सलामती विचोबर की मौजूदा सूरतहाल से ख्याल की डेवट कई हुई। पाकिस्तानी क्यादत खिते की अमून इस्तेहकाम ला सफारती हल कढ़ण से जोर भर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो विचोबर में तकरार की पुरमुन हल वाले कोशिशों को हिस्सों है। ईरान मुकम्मल तौर से तबाह थी वो है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो समाजी वेबसाइट से बयान। अमरीकी नाणे वाले वजीर स्कॉट बेसन तेहरान खिलाफ डी डे की शुरुआत थी वही। ईरान के व्यापार में सहूलत दींदड़ मुल्क इदार सजा दिनी वी। पासदारान इनकलाब अमरीका की मुआशी हमले जो ऐलान, फौजी महाज से नाकामी जो एतराफ़ है। ईरानी आर्मी चीफ तो वी साल तंग विणी पी तो विड़ी मुल्क की दिफा तो न हटंदी।

नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदारत हेठ निजकारी बाबति काबीना कमेटीअ जो इजलास निजकारी जे पहिरें मरहले में शामिल डिस्कोस फेस्को गेपको ऐं आइस्को जे री स्ट्रक्चरिंग प्लान जी मंज़ूरी ॾिनी वई। चूंडियल असासा ऐं रहियल पेंशन नई हुकूमत कंपनी एस पी वी ॾांहुं मुंतकिल थींदी। मौजूद मुलाज़मनि जूं बकायाऊं डिस्पोज़ जी ज़िमे हूंदियूं। पधरनामे में चयो वियो आहे त बिजली जूं क़ीमतूं नेपरा ई तय कंदी, मुलाज़मनि जे हक़नि जो बि तहफ़ुज़ कयो वेंदो।

ऐं सिस्टम नाकाम नाहे थियो, डिलीवर करे रहियो आहे। सिस्टम बाबति बहितर फ़ैसिलो अवामी करे सघे थो। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक़ चयो आहे त हालतूं पहिरीं घणी ख़राब हुयूं, हाणे बहितर थी चुकियूं आहिनि। मुआशी सूरत हाल में बहितरी वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जी कोशिशुनि जो नतीजो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जडे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो आसान जवाब यो आ, ये बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए, ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल,
5: گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
9: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار لائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
9: 0331252578 6
5: جی ہاں 2315525786
9: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز

एफएम 90.4 मातलीए लाइव स्टूडियो में आवा के चवंदा एक दफो वरी भलीकार केटीएन न्यूज कमर्शियल स्पॉट्स पुजाना असि अवां जी खिदमत में एक दफो वरी हाजिर थे आयूं प्रोग्राम रसरियाण में। रसरियाण जो सफर जारी रहंदो इंशाल्लाह ताला रात जो 9 वगे ताईं। प्रोग्राम जे बे हिस्से में वसी तवां सां कंदासीं ॻाल्हियूं, अवां जा मैसेज असां ताईं पहुचनि पिया, उहे बिल्कुलु हिन प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। इन खां सवाइ उहा मौसीकी जेके अवां ॿुधणु चाहियो था उहा बि हिन प्रोग्राम जो हिसो हूंदी।

ॻोठ इस्माइल वाढे खां लालबख्श वाढे याद कयो आहे। लालबख्श अवां सां गॾु आहे। रज़ा सुमेर तंज़ीला, रज़ा सुमेर ऐं तंज़ीला अवां सां गॾु आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी। अवां असांखे मैसेज कयो ऐं प्रोग्राम खे पसंदि कयो। लखी अब्बास प्रोग्राम ॿुधे पियो, अकबर सियाल प्रोग्राम ॿुधे पियो, अयाज़ गुल प्रोग्राम ॿुधे पियो मातली में। वॾी महिरबानी। ॻोठ इस्माइल वाढे में नंढड़ो हार्स बि प्रोग्राम ॿुधे पियो। हार्स वञी वॾी महिरबानी। साईं मुंहिंजा के ग़लतियूं वॾियूं हूंदियूं आहिनि, के नंढियूं हूंदियूं आहिनि, ऐं कॾहिं नंढियूं ग़लतियूं मां वॾियूं ग़लतियूं बि थी वेंदियूं आहिनि। इन करे कोशिशि कजे त ग़लतियुनि जी जेका गुंजाइश आहे उहा घटि रखिजे। ग़लतियूं हूअं बि हासेकार न कयूं वेंदियूं आहिनि ऐं थी वेंदियूं आहिनि। के त ॼाणू माण्हू ईअं बि चवनि था त ग़लतियुनि मां इंसान सिखंदो आहे। ऐं ग़लतियूं उहे कंदा आहिनि जेकी कुझु कंदा आहिनि। पंहिंजे इदारे जी कारकर्दगी बहितर बणाइण में, पंहिंजे कमकार खे अॻियां वधाइण में हमेशह माण्हू जेकी कोशिशूं वठंदो आहे त हुन में ग़लतियूं बि थींदियूं आहिनि। ग़लती कंहिं बि कम में थी सघे थी, ॻाल्हाइण में बि ग़लती थी सघे थी।

बहरहाल ग़लतियूं सोचे समझी न कयूं वञनि, बाक़ी ग़लतियूं जेकॾहिं थी वञनि त कोशिश कजे त उन्हनि खे सुधारजे, जीअं उहे दोबारा ग़लतियूं न थियनि, उहे ग़लतियूं जेके आहिनि ॿीहर न थियनि।

0: जीएफएम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम रस रिहाण अवां ताईं पहुंचायूं पिया। अवां बिन प्रोग्राम में हिस्सो वठी सघो था। अवां जा मैसेज असां ताईं जीअं पहुता तेन प्रोग्राम में जरूर शामिल थींदा। गॾो गॾु खूबसूरत नगमा पिणु अवां ताईं पहुचाईंदासीं, पर हिन वक़्तु वठंदासीं हिकिड़ो नंढड़ो सफ़ा नंढड़ो कमर्शियल ब्रेक।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
0: मूं इहो ई चयो त सफ़ा नंढड़ो ब्रेक आहे, त बिल्कुलु नंढड़ो ब्रेक हो, हिकिड़ो कमर्शियल स्पॉट्स फिक्स स्पॉट जेको अवां ताईं पहुचायोसीं। सलाम असां ताईं पहुता आहिनि ऐं सलाम जिन साथियुनि मोकिलिया आहिनि उन्हनि जा नाला वठंदासीं। गुलाब लगारी खां, जीअं शहर गुलाब लगारी खां असांजो शायर साथी आहे गाज़ी ख़ान रिंद, फैज़ान अली रिंद, शहज़ाद अली रिंद, रिज़वान अली रिंद ऐं नंढड़ी कोनेन ज़हरा बि असां सां गॾु आहे। गाज़ी ख़ान, अवां पंहिंजे साथियुनि सां गॾिजी प्रोग्राम ॿुधो पिया, असांजो आवाज़ ऐं प्रोग्राम अवां खे वणे पियो, इन जे लाइ महिरबानी। अवां सुरैया सुमरो जे कंहिं गीत जी फरमाइश कई आहे त उन जे लाइ अवां खे करणो पवंदो थोरो इंतज़ारु। पर हिन वक़्तु सुरैया सुमरो जो त आवाज़ न, पर हिकिड़ो ॿियो ख़ूबसूरत आवाज़ अवां जे समातनि जो नाम कयूं था, ॿुधी ॾिसो। अवां केॾांहुं बि न वञिजो, ॿुधंदा रहो जी एफ एम 90.4 मातली, सिंध जो आवाज़।

मूं सां कूड़ी मोहबत जूं ॻाल्हियूं न कर, कूड़ त कंहिंसां बि ॻाल्हाइण न घुर्जे ऐं सचाई जो दामन कॾहिं बि हथ मां न छॾिजे। रसरियाण में सरम सिंधी जो ख़ूबसूरत आवाज़ अव्हां जे नाम कयोसीं, असांखे उमेद आहे तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। तॾहिं ग़ुलाम हैदर में अब्दुल अज़ीज़ सूमरो साहब असांखे ॿुधे पियो, ऐं ग़ुलाम से लगारी साईं अव्हां जी वॾी महिरबानी। मातली खां अवामी शायर बेवस निज़ामाणी बि असां सां गॾु आहे। बेवस साईं वॾी महिरबानी, अव्हां असांजा पुराणा ॿुधंदड़ साथी आहियो, हीउ प्रोग्राम अव्हांजो

साईं मुंहिंजा प्रोग्राम में मूं ज़िक्र कयो मियां मिठू थियण जो, कॾहिं कॾहिं के माण्हू मियां मिठू थींदे देर न कंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं मियां मिठू के माण्हू थियण न चाहींदा आहिनि। मियां मिठू जे पोयां बि हिकड़ी कहाणी आहे, इन जे करे ई चयो वञे थो त जेको ॿियो माण्हू आहे या फलाणो माण्हू आहे उहो त मियां मिठू लॻो पियो आहे। बहरहाल गुज़िरियल प्रोग्राम खां वठी अॼु बि ॿुधंदड़नि इहा फरमाइश कई आहे त आऊं पंहिंजी शायरी प्ले कयां। हालांकि मुख़्तलिफ़ जॾहिं बि मूं प्रोग्राम कया आहिनि मुख़्तलिफ़ स्टेशननि ते, चाहे उहे PBC जी हुजनि या FM स्टेशन्स हुजनि, पर मुंहिंजी कोशिश हूंदी आहे त कॾहिं बि मूं पंहिंजे प्रोग्राम में पंहिंजी शायरी प्ले न कई आहे, छो त इहो आहे मियां मिठू थियणु। पर अॼु लॻे थो त GAFM जे ॿुधंदड़नि खटियो आहे ऐं मूं हारायो आहे, त इहा हार बि मूंखे क़बूलु आहे।

अवन जे लाइ प्ले कयो आहे सुरैया सुमरो जो खूबसूरत आवाज़। ॿुधंदा रहो जी FM 90.4 मातली सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3443-842।
5: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

जीएफएम 90.4 मातली ये लाइव स्टूडियो में एक दफो वरी अवां के चवंदासी भली कार हिन प्रोग्राम में अवां जो असांजो साथ रहंदो इंशाल्लाह ताला रात जो 9 वगे ताईं प्रोग्राम हाणे आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजी पुॼाणी जे तरफ़ पंहिंजी मंज़िल जे तरफ़ रवां ई दवा आहे। ख़ालिद नुतकाणी साहिब मातली खां हिकु दफ़ो वरी असांखे यादि कयो आहे, जेको गीत ॿुधायोसीं सुरैया सुमरो जी आवाज़ में, उन्हनि खे तमामु घणो वणियो आहे। ख़ालिद साईं, हीउ प्रोग्राम अव्हांजो त मौसीकी बि अव्हांजे नाम

शहबाज़ मल्हा साहब असांजो आरजे साथी आहे, अॼुकल्ह जुंगशाही जे तरफ़ वियल आहे। उते दोस्तनि सां गॾिजी प्रोग्राम ॿुधे पियो। शहबाज़ साईं, वॾी महिरबानी, अवां असांखे जुंगशाही में ॿुधो पिया ऐं कनायो पिया। अवां सां गॾु आहिनि चाचा मोहम्मद मलूक पलीजो साहब ऐं अदा असद पलीजो साहब, इरशाद पलीजो साहब ऐं मुनवर पलीजो साहब। त इन्हनि साथियुनि जी वॾी महिरबानी, मोहम्मद मलूक साईं, असद साईं, इरशाद साईं ऐं मुनवर साईं ऐं शहबाज़ साईं, अवां जी वॾी महिरबानी। अवां रस रिहाण खे जुंगशाही में ॿुधो पिया। जुंगशाही तारीख़ी शहर आहे, जुंगशाही तारीख़ी शख़्सियतनि खे जनम ॾिनो आहे, जिन ते सिंध नाज़ करे थी ऐं असांखे अवां ते नाज़ आहे। अवां अॼोके प्रोग्राम में हिसो वरितो, शामिल थिया, वॾी महिरबानी।

अवां सां गॾु आहे मोहम्मद यूसुफ खोसो साहब, सजाद खोसो बि अवां सां गॾु आहे। त सजाद साईं, मोहम्मद यूसुफ साईं ऐं वसीम साईं, अवां हिकु दफ़ो वरी असांखे मैसेज कयो, पैगाम मोकिलियो। यकीन करियो असांखे ॾाढी ख़ुशी थी, बार बार जॾहिं तव्हां मैसेज कयो था ऐं अवां लिखियो आहे त इंतज़ारु रहंदो हैदर खोसे ॿुधण जो। असीं कोशिशि कंदासीं, अॼोके प्रोग्राम में नथा ॿुधाए सघूं, इनशाला ताला ईंदड़ प्रोग्राम में कोशिशि कंदासीं। असां वटि जेकॾहिं हैदर खोसे जी आवाज़ में गीत पियल हूंदा त ज़रूरु अवां ताईं पहुचाईंदासीं।

0: रुखसार हैदरी जो खूबसूरत आवाज़ अवां जे समातन जो नाम कयो सी जी एफ एम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम आहे रस रियाण सलीम वाढो बि असांखे ॿुधे पियो अवां जी महिरबानी ॻोठ हाजी मोहम्मद उढेजे में आदम उढेजो ऐं ममताद उढेजो बि असांखे ॿुधनि पिया राजे खानाणी में ॿुधे पियो नौजवान शायर खाकी जानी खाकी साईं महिरबानी मातली खां अनमोल प्रोग्राम ॿुधण जो इतला ॾिनो अनमोल अवां जी महिरबानी ॻोठ मुरीद टालपुर खां अब्दुल्ला टालपुर साहब असांखे यादि कयो आहे सलाम चयो अथनि ऐं तव्हां मुंहिंजी पोइट्री खे पसंदि कयो इन लाइ महिरबानी त अब्दुल्ला टालपुर साहब ही प्रोग्राम अव्हांजो पंहिंजो आहे तव्हांजी महिरबानी हिन वक़्तु वठंदासीं हिकिड़ो नंढड़ो सफ़ा नंढड़ो कमर्शियल ब्रेक
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़ रतु अचणु सख़्त सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाइ आज़मूदा कोरस निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-24-01-287 सुकून एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम
3: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

जी एफ एम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो में एक दफो वरी अवां जी खिदमत में असां हाजिर आहियूं। प्रोग्राम जो सफ़र आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजी पुॼाणीअ तरफ़ वञे पियो। कोशिश कंदासीं त ॿ गीत अवां जे समातन जे नाऊं थी सघनि। त हिन वक़्त जंहिं आवाज़ जे तरफ़ अवां खे वठी पिया हलूं उन जो फन जे हवाले सां पंहिंजूं ख़िदमतूं, पर हुन जे आवाज़ में हिकिड़ो मिठो दर्द समायल रहियो। अॼु बि जॾहिं संदसि प्यारे आवाज़ खे कनायूं था त यकीन करियो जेके दिलि में एहसास जनम वठनि था त हुन जे लाइ दुआ लाइ हथ खजनि था। जी असां हुन जे लाइ प्ले कयो आहे मूसा हुसैन समूह जो ख़ूबसूरत आवाज़, पंहिंजे वक़्त जो हिकिड़ो यादगार गीतु।

मूसा हुसैन समय जो खूबसूरत आवाज़ अवां जे समातुनि जे नाऊं कयोसीं। प्रोग्राम रस रिहाण ऐं बिल्कुलु प्रोग्राम जा थोरा लम्हा वञी बचिया आहिनि। साईं मुंहिंजा तॾहिं चवंदा आहिनि वक़्त जो क़दुरु कयो, वक़्तु बादशाह आहे। वक़्तु कंहिंखां बि न आहे पुछंदो, पर असां जेकॾहिं वक़्त सां गॾु पंहिंजा पेर खणंदासीं त ज़िंदगी में कॾहिं बि हार न खाईंदासीं। अचो त वक़्त सां गॾु हलणु सिखूं। जिन कौमनि जिन माण्हुनि वक़्त जो क़दुरु कयो उहे सदाई कामयाब थिया। कॾहिं कॾहिं वक़्तु माण्हू खे मिलंदो ई न आहे, कॾहिं कॾहिं वक़्तु एतिरो हूंदो आहे जो करण लाइ कुझु न हूंदो आहे, पर ॾिठो वञे त करण लाइ बि सभु कुझु हूंदो आहे। ॻाल्हि आहे ज़िंदगी गुज़ारण जे तरीक़ेकार जी, त उहा कीअं थी गुज़ारजे।

मुंहिंजे महबूब खे वञी चयो, दिल ॾाढी लॻी आहे, सिक ॾाढी लॻी आहे, ॻोठ ॿीड़े लंजवाणी खां असांखे यादि कयो, वाहिद बख़्श लंजवाणी, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। इन ते ई अॼोको प्रोग्राम रस रिहाण पहुचे पियो पंहिंजी पुॼाणी ते, ऐं असीं वठंदासीं अव्हां खां इजाज़त। पंहिंजे आरजे पंहिंजे मेज़बान मीर मुर्क वाढे खे ईंदड़ प्रोग्राम यानी ईंदड़ सूमर ताईं रस रिहाण ॿुधण ताईं ॾींदा इजाज़त, मोकिलायूं था अलाह निगहबान।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मुलाकात दौरान मौजूद ISPR मौजे मुलाकात दौरान पाकिस्तान ए ईरान विच में बेतरफन लागापन इलाकाई सलामती ए विच ओभर की मौजूदा सूरत हाल से ख्याल की डेवट कई वही। पाकिस्तानी क्यादत खिते की अमुन ए इस्तेहकाम लाए सुफारती हल कढ़ण ते भी जोर भरियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरों विच ओभर में तकरार की पुर अमुन हल वार कोशिशों को हिस्सो है। ईरान मुकम्मल तौर से तबाह थी वो है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो समाजी वेबसाइट से बयान। अमरीकी नाणे वाले वजीर स्कॉट बेडसेट चया है तेहरान खिलाफ डी डे की शुरुआत थी वही। ईरान के व्यापार में सहूलत दींदड़ मुल्क ए इदारन के भी सजा दिनी वेंदी। पासदारान इनकलाब चया है अमरीका की मुआशी हमले जो ऐलान फौजी महाज से नाकामी जो एतराफ़ है। ईरानी आर्मी चीफ चया वीह साल जंग विड़नी पई तो विढ़ंदी मुल्क की दिफा तोते न हटंदी। विच ओभर में बोहरान के पार फलस्तीन जो मसलो है। फलस्तीन ए इसराइल विच में गालन की बहाली ए आजाद फलस्तीनी रियासत जो क्याम जरूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग के उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला से मुलाकात दौरान गालबोल दौरान इजहार। चीनी परदेही वजीर वांग यी है तो विच ओभर की सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल थी वही है। अमन अमान की बहाली लाए गालन तरफ वापसी अंटर है। चीनी परदेही वजीर ए कोयती परदेही वजीर की मुलाकात दौरान सहकार वधाने ते बेतफाक। वजीर आजम पाकिस्तान ओवलियो वैल्यू चेन पॉलिसी जारी करे छी। तकरीब के खिताब कंदे शहबाज शरीफ चयो तो मुल्क में जरई इनकलाब लाए हारन की भरपूर मदद कई वेंदी। 60,000 एकड़न ते जैतून जो फसल पोखियो पियो वञे। जैतून के फसल के हथी डेई परदेही नाणो बचाए सकजे तो। हुकूमत हारन की मदद वारो सिलसिलो जारी रखंदी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की सदारत हेठ निजकारी बाबत काबीना कमेटी जो अहम इजलास। निजकारी के पहरे मरहले में शामिल डिस्कोस पेस्को गेपको ए आइसको की रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की मंजूरी डिनी वही। चूंडियल असासा ए रयल पेंशन नई हुकूमती कंपनी SPV डां मुंतकिल थींदी। मौजूद मुलाज़मन जो बकायाऊं डिस्कोस की जिम्मे हूंदियूं। पधरनामे में चयो वियो आहे त बिजली जो कीमतूं नेपरा ई तय कंदी। मुलाज़मन जे हक़नि जो बि तहफ़ुज़ कयो वेंदो।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-878 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।

0: दरिया सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।